listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Cool Song.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: Cool Song.

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन call 4411 1133.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:10 हो रहे हैं। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम भरने वाले हैं उड़ान और बहुत सारी बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। आप अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए क्या है हाल, कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या क्या करने का इरादा है आज, क्योंकि इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। और थोड़ी देर में आपके रेडियो सेट में

तो भाई जल्दी जल्दी अपने क्यूट मैसेजेस भेज दीजिए इस क्यूट दिन को किक स्टार्ट करने के लिए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो जल्दी जल्दी कर दीजिए मैसेज, इंतजार किस बात का है। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Stay tuned.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
5: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: मोहन करण की आवाज में हमने ये गाना सुना, खट्टी बट्टी मूवी का। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:22 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास मैसेजेस आए हैं, जरा एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से मैसेज आए हैं, किस किस ने मैसेज किया है। मोहम्मद असलम भाई ने मुझे मैसेज किया है, एक फोटो भेजा है जिसमें बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग लिखा है एक फूल के साथ। थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग। उसके साथ साथ मुझे जुल्फी भाई का मैसेज आया, लिखा है बिटवीन 1000 यस्टरडेज एंड 1 मिलियन टुमारोज देयर इज ओनली 1 टुडे सो डोंट लेट इट गो टू वेस्ट, गुड मॉर्निंग करके। वाह, बिल्कुल यही मोटिवेशन ही तो चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, लिखा है सम पीपल लुक फॉर अ ब्यूटिफुल प्लेस, अदर्स मेक द प्लेस ब्यूटिफुल, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच। अबरार भाई का भी मैसेज आया है, अबरार भाई ने भी एक बहुत ही प्यारा फोटो भेजा है, उसमें लिखा है गुड मॉर्निंग हैव अ ब्यूटीफुल डे करके, थैंक यू सो मच। और फिर मुझे मैसेज आया है अभी सबिया साची जी का, उन्होंने लिखा है हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है। और आप सभी ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच, आप सभी को काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं यहाँ पे। और थोड़ी देर में हम वापस आएंगे गानों के उस पार एक सवाल लेकर, तो सवाल के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम परखने वाले कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सबसे कितने तेज हैं। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Also, no, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का, तो चलिए शुरू करते हैं।
1: रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में मेरा आज का सवाल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? जी हाँ, वर्ल्ड में लार्जेस्ट सिटी कौन सा है ये आपको मुझे बताना है। आप मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी मुझे बताइए इस सवाल का जवाब क्या है। देखते हैं कि हम पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं से कितने तेज हैं आप लोग। तो फिलहाल यही बात बताते हुए सवाल पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। लव यू मिस्टर कलाकार मूवी का गाना प्ले करते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। और भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने पूछा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी जो है वो कौन सा है, उसके बारे में जरा मुझे बताइए। और हमारे पास थोड़े जवाब आए हैं, जरा देख लेते हैं हम एक एक करके। मुझे एक मैसेज आया है अनिल जी का, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। उन्होंने बोला है द आंसर इज जकार्ता इंडोनेशिया। और संधू जी का मैसेज आया, लिखा है उन्होंने गुड मॉर्निंग ब्रो हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। उन्होंने लिखा है आंसर इज जकार्ता फ्रॉम इंडोनेशिया। उसके साथ साथ मुझे रश्मिका जी का भी यही मैसेज आया है, उन्होंने भी जकार्ता ही भेजा है। और एक और मैसेज आया है जिसमें नाम नहीं लिखा है, और उसमें मुझे मैसेज में लिखा है एक मिनट रुक जाओ, हाँ न्यूयॉर्क सिटी लिखा है। तो देखिए अब न्यूयॉर्क सिटी है सही आंसर या फिर जकार्ता है सही आंसर, मैं कहता हूं दोनों है सही आंसर, बट कैसे वो है मैट्रिक्स पे। ठीक है, अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी अगर हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन के मैट्रिक्स में, तो जकार्ता है जो इंडोनेशिया में है, जहां पे 41.9 मिलियन रेसिडेंट्स रहते हैं। ठीक है, मगर अगर हम ज्योग्राफिक लैंड एरिया के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाता है न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी जो है 8683 स्क्वायर किलोमीटर स्पैन करता है, बहुत बड़ा है, मैसिव सिटी, अर्बन आर्किटेक्चर है। ठीक है, काफी बड़ा लार्जेस्ट कंटिन्यूअस अर्बन लैंड एरिया है ग्लोबली न्यूयॉर्क सिटी का। और अगर हम बाय सिटी प्रॉपर यानी प्रॉपर सिटी के पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उसमें चोंगहिंग चाइना आता है। तो आपने जो जवाब मुझे भेजे हैं सही जवाब भेजे हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर बात करनी थी हमें, इन डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स में आंसर्स बदलते हैं। अगर हम मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन लेंगे तो जो आपने जवाब दिया है जकार्ता वो जाएगा, सिटी प्रॉपर पॉपुलेशन लेंगे तो चोंगहिंग चाइना में जाएगा, बाई ज्योग्राफिक लैंड एरिया दिस गोज टू न्यूयॉर्क सिटी। और थैंक यू सो मच, आप सबने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया, इसलिए आपके लिए यहाँ बजेंगी स्पेशल तालियां। और भाई उसके साथ साथ बता दूं, जब हम आएंगे गानों के उस पार नेक्स्ट आवर में और भी बातें करेंगे, मौसम के बारे में थोड़ा बात बात करेंगे और सुनेंगे कुछ गाने।

0: और उसके बाद एक और गाना।
1: रहने दे बहके, बहके
0: मगर अभी यार ये वाला गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है।
2: तुमने सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रोए बिछोरी बौड़े से हो रे।
0: तो चलिए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर
4: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
3: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
4: ये गाना।

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

गाने का नाम है तुम्हें ही अपना माना है, मैंने भी माना था, मगर बात यह है कि अगर यही फीलिंग आगे से रेसिप्रोकेट नहीं होती तो फिर भाई छोड़ना ही बेहतर है। लाइफ में एक ही चीज है जिसको मैंने अपना माना, उसने भी मुझे अपना माना, वो है खाना। खाने से याद आया, भूख तो लगी है, मगर भूख से पहले एक बात बता दूं, अभी मौसम का हाल जान लेते हैं, क्योंकि मौसम इज नॉट मौसमिंग राइट नाउ, और आजकल गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, और अभी का टेम्परेचर आप बिल्कुल मत चौंकिए, बहुत कम है, 37 डिग्री सेल्सियस ही है, डरने की कोई बात नहीं है। और टेम्परेचर जो हाईएस्ट जाएगा आज वो होगा 44 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट होगा 32 डिग्री सेल्सियस। हवाएं बह रही हैं 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। एटलीस्ट उड़ा के नहीं ले जाएगी तो थोड़ी ठंडक तो दे ही सकती है, मगर क्या करे, हवा ठंडक हमें देगी नहीं देगी ये तो हम नहीं जानते, मगर हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि बाहर के नज़ारे क्या हैं, जरा बताइए हमें, दिखाइए हमें, फोटोज भेजिए 3311063 पर। और देखिए, मैं तो स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ, चार दीवारों के अंदर बैठा हूँ, आप लोग बाहर हैं, आपके लिए मौसम कैसा है, नज़ारे अच्छे अच्छे दिख रहे हैं तो फोटोज भेज दीजिए मुझे। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे, और यही बोलते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हेलो लिसनर्स मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
6: रेडियो ओलिव नंबर वन
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
8: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
9: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.
10: Hazir hai husn, ishq ki mehfil mein, aaj phir hazir hai.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:17 हो रहे हैं और यहां पे जो है मेरे पास एक मैसेज आया है। मुझे मैसेज भेजा है पराश अधिकारी जी ने, उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा है। वेस्ट बे के आसपास वो ड्राइव करके जा रहे हैं, काफी सनी डे है, गर्मी भी बाहर बहुत है। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच ये फोटो मुझे भेजने के लिए। सिमिलरली मुझे दीपक जी ने भी फोटो भेजा है और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया, टी से कुछ शुरू हो रहा है, उसके बाद कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, मतलब बनाए हुए हैं, सो आई एम नॉट एबल टू मेक आउट द नेम, बट थैंक यू सो मच, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है, काफी बढ़िया एक खुला हुआ आसमान। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ये आसमान देखना ना बहुत मजा आता है, स्पेशली यहाँ पे एकदम से यार वो एक्सेंट थोड़ा गलत हो गया, स्पेशली आ गया, सॉरी। हाँ, बाहर जब हम जाके देखते हैं आसमान, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे समर टाइम पे बहुत ही खुला आसमान होता है, बहुत ज्यादा खुला आसमान, ब्राइट ब्लू स्काई रहता है, जो इंडिया में उतना मैंने नहीं देखा। इंडिया में यूजुअली जब भी मैं बाहर निकलता हूँ समर टाइम में, दिन के टाइम में, तो थोड़ा हल्के हल्के क्लाउड्स मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं और मेरे फ़ोन में कितने बहुत सारे फोटोज़ भी मैंने उसके खींच रखे हैं। और रिसेंटली मुझे एक मेमोरी भी आया था इसका, क्लाउड से रिलेटेड एक फोटो गूगल फोटोज़ में ये आया था। मगर यहाँ के आसमान में ना मुझे बादल उतने दिखते नहीं है, विंटर सीज़न में दिखते हैं, बट इस सीज़न में समर सीज़न में उतने दिखते नहीं है। एनीवे थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने फोटो भेजा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो मेरा था आप लोगों ने पूरा किया, वक्त निकाल के फोटो भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल जीत लिया आपने मेरा। और इसी खुशी में काम करते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक प्ले करते हैं अरिजीत सिंह और जैक नाइट की आवाज में, सुनते हैं जबरदस्त हिट और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई वक्त हो चुका है फिटनेस के बारे में बात करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो फिट है तो इट है। मैं ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। ये सुनने के बाद आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप बोलोगे सुदेव क्या कह दिया यार। फैक्ट ये है कि रेगुलर स्टेयर क्लाइंबिंग इंप्रूव्स हार्ट फिटनेस, जो हमको किसी ने नहीं बताया है। ये नया एक फैक्ट है जो अभी आया है मार्केट में। मजाक कर रहा था, बट या इसके बारे में ज़रा रिसर्च ओरिएंटेड तरीके से बात करते हैं, ठीक है। रिसर्च ये दिखाती है कि स्टेयर्स चढ़ना एक सिंपल लेकिन हाईली इफेक्टिव कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। जब आप स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं तो आपके हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पहुंचाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है उसको। अपने हार्ट को थोड़ा और एक्टिव होना पड़ता है, इससे हार्ट और लंग्स दोनों ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर बनते हैं। और स्टेयर क्लाइंबिंग के दौरान हार्ट रेट क्विकली इंक्रीज हो जाता है। लार्ज मसल ग्रुप्स जैसे कि लेग्स, ग्लूट्स, कोर ये एक्टिवेट होते हैं। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है जिससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ट्रेन होता है। स्टडी सजेस्ट करती है कि 5 से 10 मिनट की स्टेयर क्लाइंबिंग भी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है दे सकती है। और रेगुलर स्टेयर्स अगर हम यूज करते हैं तो बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस रहती है, लोअर ब्लड प्रेशर रहता है, इंप्रूव्ड कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल रहता है, और रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज भी रहता है। सो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर भी करना चाहता हूँ कि हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में हम इतने एक्टिव हैं कि

0: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Dr. On Air brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है हमारे पास। कतर जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी बढ़िया तरीके से एक ब्रेक थ्रू कर रहा है। कतर मिना रीजन में 8th रैंक पर है। कतर को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में 8th पोजीशन मिली है। स्टार्टअप सपोर्ट से मार्केट क्रिएशन की तरफ अगर हम थोड़ा फोकस डालें तो ये पता चलता है कि कतर अब सिर्फ स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने पर नहीं बल्कि उनके लिए रियल मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर भी फोकस कर रहा है। इसमें कतर डेवलपमेंट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कतर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स का भी स्ट्रांग सपोर्ट है। और एक और चीज जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि कतर का कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है स्टार्टअप्स को इनोवेशन से कमर्शलाइजेशन तक जल्दी पहुंचने में बहुत मदद कर रहा है जिससे वो रीजनल और ग्लोबल मार्केट में अच्छे से स्केल कर सकें। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: एप्लीकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन।
2: इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन।
1: FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद।
1: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
1: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
7: जैकी श्रॉफ
6: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
8: रेडियो
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
5: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. स्टेशन क्लॉक में 8:17 हो रहे हैं और यहां पे भाई चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर.
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर.
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
3: Your trusted remittance partner.
0: तो यार यहाँ पे मुझे लगता है आज मंडे है. फीफा में भी शायद मंडे ब्लूज चल रहे हैं क्योंकि तीन ही मैच है और पहला मैच जो है वो हुआ था उरुग्वे और काबो वर्दे के बीच में जहाँ पे 2-2 स्कोर रहा. मानना पड़ेगा भाई काबो वर्दे को क्योंकि उन्होंने उरुग्वे के साथ जो काफी एक प्रॉमिसिंग टीम है अच्छी टीम है ड्रॉ कर दिया उसके साथ मैच. न्यूजीलैंड और इजिप्ट की बात अगर हम करें तो इजिप्ट ने जो है 3-1 से मैच अपने हाथ में कर लिया है. आज एक और मैच है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में. क्लियर फेवरेट्स कौन है हम सब जानते हैं कौन जीतने वाला है ये भी हमें पता है. मगर शॉकिंग बात थी कल के मैचेस में भाई. ट्यूनिशिया और जापान के मैच में 4-0 से जापान ने जो है मैच को अपने हाथ में ले लिया है. स्पेन सऊदी अरेबिया का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर था बट फिर भी गुंजाइश थी थोड़ी सी कि सऊदी अरेबिया थोड़ा मैजिक करेगा मगर वो मैजिक नहीं आ पाया. 4-0 से स्पेन ने जो है सऊदी को हरा दिया है. बेल्जियम और ईरान का मैच 0-0 में ड्रॉ रहा और बेल्जियम के प्लेयर को रेड कार्ड भी मिला. शॉकिंग चीजें हो रही है इस बार वर्ल्ड कप में क्योंकि बेल्जियम काफी स्ट्रांग टीम है यार. ऐसे हल्के में लेने वाली टीम नहीं है. उनको ईरान ने जो है 0-0 में रखा. मतलब काफी इंटेंट के साथ जो है ईरानियन टीम वहाँ फुटबॉल में खेलने के लिए उस मैदान में उतरी से हमें पता चलता है. उसके साथ साथ कल के कुछ मैचेस भी हैं फ्रांस और इराक के बीच में जो सुबह होने वाले हैं और नॉर्वे और सेनेगल का मैच भी होने वाला है. बाकी अपडेट्स हम बताएंगे आपको धीरे धीरे. फिलहाल यहाँ पे काम करते हैं आगे बढ़ते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
5: सर क्या पर ये बात है.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
1: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई हमने गाना सुना सुनिधि चौहान की आवाज में, पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ मूवी का। पॉपकॉर्न खाते हुए आज का मैच भी देख लेना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। मैच होने वाला है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में। अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल बात है, ठीक है। लायनल मेसी एक बार फिर वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को लीड कर रहे हैं और ऑस्ट्रिया के मैच में हिस्ट्री बनाने के वो बहुत करीब हैं। बताता हूँ कैसे। मेसी ने अल्जीरिया के अगेंस्ट हैट्रिक लगाया और वर्ल्ड कप के 16 गोल्स के साथ वो मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड के बराबर आ गए, ठीक है। अब उनके पास चांस है कि वो ऑल टाइम वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर बन जाएं। ये बहुत ही बड़े एक मोमेंट हो सकता है, मतलब इससे बढ़िया एक पीक मोमेंट मुझे लगता नहीं है कि मेसी के लाइफ में अब आ सकता है। गोल के बाद मेसी इमोशनल जरूर हो गए थे पिछले मैच में, क्योंकि उनके फादर हेल्थ इश्यूज से रिकवर कर रहे हैं। 39 साल के होने वाले हैं वो, फिर भी अर्जेंटीना के मेन स्क्वाड में मेन स्टार हैं वो। और अर्जेंटीना 4 साल पहले यहाँ पे कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो जीत चुकी है और अब बैक टू बैक विन करने की कोशिश कर रही है। कोच लायनल स्केलोनी ने टीम को मेसी के अराउंड बिल्ड किया, जहाँ सारे प्लेयर्स उनको सपोर्ट करते हैं, विच इज वेरी अमेजिंग। क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप को अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा टीम जो था, अर्जेंटाइन टीम जो था, कि भाई मेसी को वर्ल्ड कप जिताना है, इस एटीट्यूड के साथ खेल रहा था। काश पोर्चुगल टीम भी इस एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में आती, इस एक जज्बे के साथ ग्राउंड में आती, जुनून के साथ ग्राउंड में आती, तो शायद हमें एक डिफरेंट परफॉर्मेंस जो है पोर्चुगल के साइड से देखने को मिलता। बट एनी वे, क्या कर सकते हैं यार। अभी टीम सपोर्ट की बात भी अगर हम करें तो प्लेयर्स जैसे एलेक्सिस मैक मैकेलिस्टर और जूलियन अल्वारेज, रॉड्रिगो डी पॉल, ये सब मेसी को बहुत रिस्पेक्ट और सपोर्ट देते हैं। और टीम का माइंडसेट ये है कि मेसी के लिए कुछ भी करना है भाई, यही तो चाहिए यार, यही तो चाहिए हमें। जो मेसी को प्यार मिल रहा है टीम में और दुनिया में, वही प्यार अगर इंसान को मिल जाए तो उसकी जिंदगी सवर जाएगी। और देखते हैं इस मैच में ऑस्ट्रिया किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि वो भी अच्छे फॉर्म में है, नेक्स्ट स्टेज के काफी क्लोज है। मैच जो है डलस के स्टेडियम में हो रहा है और अर्जेंटीना को ग्रुप विन करने का चांस भी बहुत इजीली मिल सकता है अगर ऑस्ट्रिया अच्छे फॉर्म में नहीं आएगी तो। अगर वो बहुत ही टॉप फॉर्म में आती है, बहुत ही अच्छी टक्कर देती है, तो शायद चीजों में थोड़ी चेंजेस जरूर आ सकती है, मगर देखते हैं कैसा होता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रिया, मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके, क्योंकि ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर। In association with, download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो.

0: आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: भाई गेमिंग फैंस के लिए काफी बढ़िया खबर हमारे पास है। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 1 एंड ब्लैक ऑप्स 2 जो है प्लेस्टेशन 4 और प्लेस्टेशन 5 के लिए वापस आ रहा है, मगर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ऊंची मत कीजिए, एक कैच भी है इसमें। ट्रेयॉग ने अनाउंस किया है कि कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 जो है जुलाई में प्लेस्टेशन पर लॉन्च होंगे। दोनों गेम्स में ओरिजिनल कैंपेन, जॉम्बीज और मल्टीप्लेयर मोड्स भी होंगे, मगर ये एक रीमास्टर्ड वर्जन नहीं है, ये PS4 और PS5 के लिए पोर्ट किए गए हैं, रीमास्टर्स नहीं है। इसका मतलब ग्राफिक्स और गेम प्ले में मेजर अपग्रेड्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसके साथ साथ ये गेम जो है PS5 का नेटिव वर्जन का नहीं है, इसलिए 120 हर्ट्ज सपोर्ट और एडवांस्ड PS5 फीचर्स मिलने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। गेम ज्यादातर ओरिजिनल वर्जन के एक्सपीरियंस को ही प्रिजर्व करेंगे। और मल्टीप्लेयर को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर ओरिजिनल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ है तो हैक्ड लॉबीज और चीटिंग का इश्यू हो सकता है, इससे पुराने PS3 और Xbox 360 वर्जन में भी देखा था लोगों ने। अभी तक एक्टिविशन ने मल्टीप्लेयर सर्वर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट देखते हैं क्या होता है। मगर गेमर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी एक्साइटिंग बात है, और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहां पे हम बात करना चाहेंगे कल के मैच के बारे में, जहां पे वैभव सूर्यवंशी ने तो भाई तूफान खड़ा कर दिया था। तूफान बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्या हुआ। दम्बुला में श्रीलंका ए के अगेंस्ट सिर्फ 11 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी जो है लिस्ट हिस्ट्री में वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। मैच में उन्होंने 29 बॉल्स में 94 रन्स बनाए। इस इनिंग्स में उन्होंने 10 चौके और 8 सिक्सेस लगाए। मैच का रिजल्ट मैं बताता हूँ। इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया और इंडिया ने पहले बैटिंग करके 377 का जो है स्कोर बनाया था। और वैभव की अगर हम बात करें तो उनका आईपीएल सीजन में भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म रहा है। 776 रन उन्होंने 16 मैचेस में बनाए हैं। 65 सिक्सेस जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया। और इस मैच के बाद जब उनसे पूछा था कि हाँ भाई कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा है, तो बोले कि देखिए यार प्रेशर वेशर तो नहीं लिया, जो प्लानिंग थी उसे एक्सिक्यूट किया, कंडीशंस अलग थे लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी यूजफुल रहा। और पिछले मैच में उतना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाया था, ऊपर से थोड़ा ऑल्टरकेशन भी हो गया था, तो उसके बाद से भाई बंदे को मौका मिल गया अपने आप को प्रूव करने का और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अपने आप को प्रूव कर दिया। यार 29 बॉल्स में 94 मारना, मतलब सोच रहे हो आप किस लेवल पे जा रहा है। और टच वुड ऐसा ही रहे, बहुत ही अच्छा टैलेंट है, उसको और अच्छे मौके मिलते रहे। और यही बात बोलते हुए जरा हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑल

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और अभी स्टूडियो में एक ऐसी महिला चल कर आई है कि मैं क्या ही बताऊं, उनके अदा के तो भाई दुनिया दीवानी है। वो एक बार मुस्कुरा दे तो फिर मैं क्या ही बताऊं, आशिक बेगाने हो जाते हैं।
1: बेगाने हो जाते
0: हैं मतलब वो गाने जो गाते रहते हैं वो तक बंद हो जाते हैं। मतलब आप मुस्कुरा देते हो तो वो ऐसे अचंभित हो जाते हैं। क्या
1: Speechless,
0: आप पहले माइक के पास आओ।
1: स्पीचलेस, फ्लैबरगास्टेड।
0: अच्छा, और एक मिनट रुको यार, डिक्शनरी निकालने कहा पीछे रखी थी, कुछ टाइम से ये सब हो नहीं रहा था ना, तो मैंने हटा के रख दी थी। हाँ ठीक है, निकाल दी। बोलो बोलो बोलो। स्पीचलेस, फ्लैबरगास्टेड
1: और
0: बताओ बताओ बताओ।
1: अगास्ट।
0: ओह माय, अगास्ट। मिजवा भाई से माइक साफ करने के लिए बोलना पड़ेगा मुझे। भाई बारिश की बूंदें छिटक गई हमारे माइक में,
1: कितना गंदा है तू यार।
0: हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ।
1: बस इतना काफी है।
0: अरे नहीं नहीं, और बताओ जिंदगी में क्या चल रहा है।
1: Like that. हाँ। बढ़िया चल रहा है एकदम।
0: अच्छा,
1: कल शाम को जाकर यहाँ से मैंने देखा।
0: हाँ आप माइक के पास आके बात करो ना।
1: कल शाम को यहाँ से जाकर मैंने देखा लेटेंट,
0: समय रैना का लेटेंट सीजन 2 जो है आ चुका है, जो यूट्यूब में भी है, नेटफ्लिक्स में भी है। कैसा लगा आपको?
1: इट इज रियली गुड।
0: ओके,
1: पीपल आर सेइंग कि अरे बहुत फिल्टर कर दिया। अरे भाई, इतने बड़े ट्रॉमा से बंदा निकला है, फिर दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: क्यों दोबारा वही हरकत करेगा।
0: बिल्कुल सही बात कही, मैं भी देख रहा था वैसे बैठ के, मुझे भी काफी अच्छा लगा यार। अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था, तो यूट्यूब में इट वॉज समवेयर अराउंड 58 मिनट्स, 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बीच का एपिसोड था। नेटफ्लिक्स में लंबा है या
1: नहीं? सेम
0: ही है ना। ओके ओके, क्योंकि बोनस क्लिप्स भी दिखा रहे थे उसमें, तो मुझे लगी शायद नेटफ्लिक्स में थोड़ा ज्यादा होगा।
1: नहीं नहीं, इट इज सेम
0: सेम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये काफी बढ़िया बात लगी मुझे समय की, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई सेम टू सेम चीज आपको नेटफ्लिक्स में भी मिलेगी, यूट्यूब में भी मिलेगी। अगर आपने देख लिया अभी तक तो बहुत बढ़िया, बताइए आपको कैसा लगा लेटेंट का सीजन 2। 3311063 पर मैसेज कीजिए हमें, जरा बताइए। और यही बात बोलते हुए जरा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे तनीषा के साथ। एक और सवाल बाकी है पूछने का, जो मेन सवाल था जो लेकर मैं आया था वो छूट गया, लेटेंट में हम थोड़ा फंस गए, मगर सवाल पूछेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल गाने सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास मेरी जान।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव, और मेरे साथ है हंसती हुई खिलखिलाती हुई माइक से बिल्कुल चिपक के बैठे मुस्कुराती हुई तनिषा मैडम। वेलकम टू बिंदास मॉर्निंग्स, कैसा लग रहा है आपको?
1: बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है?
0: मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, जैसे ही आपको देखा मैंने स्टूडियो में आते हुए मेरा चेयर फिसल गया, मैं गिर गया। मैं सोचा कि भाई क्या हो गया ये आज,
1: तो जो मैं दिक्कत है फिर।
0: हाँ भाई, चेयर में भी दिक्कत है थोड़ी, मे बी वेट का भी हो सकता है मेरा, बट इट्स ओके। एक सवाल पूछना था आपसे, मैंने सुना है कि आप राम गोपाल वर्मा के बहुत बड़े फैन हो।
1: नहीं, गलत सुना है आपने।
0: गलत सुना है आपको, राम गोपाल वर्मा की आग पसंद नहीं है?
1: मुझे सिर्फ गोपाल शर्मा पसंद है जो कि मेरे पापा है।
0: ये कल स्टोरी डाली अंकल के साथ, फोटो डाली, बहुत बढ़िया, बहुत
1: भाई उसमें इतने डैशिंग लग रहे हैं, व्हाइट मुस्टैश, व्हाइट हेयर, एवरीबॉडी कम्स इन टेल्स हिम कि क्यों रखा है, कलर क्यों नहीं कर लेते, और ज्यादा बूढ़े लग रहे हो।
0: अरे
1: पापा कहते मेरी बेटी ने बोला है।
0: ओ ये बेटी, बेटी के आगे कोई बोल सकता है क्या? मैं बोल देता हूँ भाई, मैं नहीं डरता बेटी से।
1: बाद में जो होता है वो अलग बात है ना।
0: देखो डरने की बात
1: वो
0: है,
1: किसी को नहीं पता है ना।
0: डरने की बात हो रही है, डरते तो हम है नहीं, ठीक है?
1: नहीं नहीं, नहीं?
0: बिल्कुल नहीं डरते, कॉन्सिक्वेंसेस को हम सीना तान के झेलते हैं। ऐसे हल्के में ले रहे हो भाई, 56 इंच का सीना ऐसे थोड़े ना है।
1: बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक चीज मुझे याद आई थी, एक मूवी के बारे में देख रहा था, तो मैंने और तनिषा ने जाके मैं वापस आऊंगा देखी थी, ठीक है? और जब हम निकल रहे थे तो 3 बॉक्स टिश्यू के तनिषा ने खत्म कर दिए थे रो रो के, चौथा चल रहा था। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस मूवी, मैं वापस आऊंगा, रिसेंटली निकली कोई ऐसी मूवी या फिर कोई ऐसा सीरीज जो आपके दिल के बहुत करीब रह गया, फिर आपके दिल को छू गया?
1: Not obviously Dhurandhar was okay. Come on,
0: yeah.
1: But इतना touch किसी ने नहीं किया, but I loved this series of Campus.
0: Okay.
1: It was very cute and very beautiful the way they showed everything. You know, all the aspects of adult age, like when you come to college and then you're experiencing things. That was really nice. And no, nothing recently. I don't recall as such.
0: Okay, nice. ऐसे मेरे लिए भी ऐसा कुछ
1: नहीं। माँ बहन was good.
0: माँ बहन was good. उसके बारे में बहुत अच्छे reviews सुने हैं मैंने.
1: And it is really good. What an amazing take on

0: देख रही थी कि कहीं ये मुझे गालियां तो नहीं दे रहा वहां बैठ के।
1: नहीं नहीं मैं देख रहा था यार, मैं मतलब जब देखना शुरू करते तो हम ध्यान से देख लेते हैं, मगर हाँ बचपन में मेरी एक आदत थी, बचपन क्या मतलब 12वीं क्लास के बाद जब टाइम मिल गया था हमें बोर्ड एग्जाम के बाद, तो सीआईडी देखता था मैं बैठ के। और सीआईडी मैंने इतना देखना शुरू किया आप मानोगे नहीं कि मैं बाद में एपिसोड्स के क्लाइमैक्स को गेस करने लग गया, और 10 में से 7 बार मैं ठीक करेक्ट होता था।
0: आई यूज्ड टू वॉच द अदर वन व्हिच यूज्ड टू कम ऑन।
1: अच्छा अटेंशन इंडिया ना,
0: क्रेजी, ओ माय गॉड,
1: बहुत बढ़िया। और मैं नहीं वो नहीं देखता था, मुझे पसंद नहीं था, मुझे काफी
0: टेलीकास्ट, मुझे एपिसोड याद हो गए थे,
1: प्रिटेंशियस लगता ना मुझे वो इसलिए। और सीआईडी में मजा आता है, मानोगे नहीं आप, मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था सीआईडी से कि मैंने सोच लिया था कि मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना है, और मैंने कोर्सेज ढूंढना शुरू कर दिया था, और एक कोर्स मिल भी गया था चेन्नई में, और पापा के एक फ्रेंड ने जाके ढूंढा तो पता चला कि अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया है, मगर स्कोप नहीं है इंडिया में। तो घर वालों ने बोला कि स्कोप किसका है इंडिया में, तो सब ने बोला इंजीनियरिंग का।
0: इंजीनियरिंग का
1: मैंने बोला, मगर मेरा उसमें कोई स्कोप मुझे दिख नहीं रहा है।
0: सेम टू सेम,
1: ठीक है, बट मैं गया इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में फन, बहुत मजा आया। बट एनीवे मेरी इंजीनियरिंग की दास्ता तो चलती रहेगी, उसके लिए मुझे लगता है अलग से पूरा एक महीना मुझे बैठ के बताना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे गाने सुनते हुए, मुस्कुराते हुए, और एक और एक वर्ड होता है ना, मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करता हूँ।
0: तुझे नहीं आता
1: है? आता है, बट मैं वो वैसे
0: भूल गए।
1: नहीं वैसे भूल कैसे सकते हैं, डरते नहीं है वहां से, ठीक है, बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ मैं। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, मेरे मन में तिल मिलाते हुए आ रहा था, तो मुझे पता ही वो है नहीं,
0: क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी है जो मुझे तिल मिला देती है।
1: भाई आप लोग गाने सुनिए, अभी मैं जरा सॉर्ट करके आता हूँ खुद को, आप गाने सुनिए, एंजॉय करिए, और कहते रहिए
0: जियो बिंदास।

0: माँ, मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

तो भाई टाटा बाबाई करते हुए निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में कशिश यहाँ पहुंच जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। तो मैं जरा निकलता हूँ, आपसे मिलेंगे हम कल सुबह 6 बजे इसी सीट में। तो तब तक के लिए एंजॉय करिए आज का दिन, खूब खुशियां बांटिए, खूब अपने आप को आप अच्छे से ट्रीट कीजिए, उसके साथ साथ याद रखिएगा अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

क्यों नहीं? बिल्कुल जी, अब कोई एड्रेस बताए तो उसे बोल देना कि हम इनकी धड़कन में रहते हैं, अगली बार पार्सल वहां दे जाना। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूं आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। एंड ब्रो फाइनली एनर्जी में वापस आ चुके हैं हम, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि संडे तक तो मैं जो है वीकेंड वाले मोड पे रहती हूँ, इंडिया की आदत है ना अभी। सो यहाँ पे मेरा वीकेंड जो है वो थर्सडे से शुरू हो जाता है एंड वो संडे तक चलता है, और मुझे यहाँ पे कतर में आने के बाद भी मंडे ब्लूज होते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, वो मेरी लाइफ अपडेट है, उससे आपका जो है ऐसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट क्योंकि आप मेरे साथ मैक्सिमम टाइम जो है बिताते हो और मैं आपके साथ मैक्सिमम टाइम बिताती हूँ एंड अब हम जो है फैमिली जैसे हो गए, तो मैं अब आपको सब कुछ बताऊँगी जो मैंने मम्मी को फ़ोन करके नहीं बताया है, मैं वो भी आपको बताऊँगी। सो फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि कतर ने मुझे अपना लिया है, कतर ने मुझे अपना कह दिया है, क्योंकि भोपाल में ना इंडिया में क्या होता था कि मैं ना ऐसे गिरती पड़ती रहती थी, मैं चीज़ों से टकराती रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसे ब्रूजेस स्कार जो है वो मेरी बॉडी पे हाथ पे पैरों पे रहते ही रहते थे, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी केयरलेस टाइप की हूँ, हो जाता है लड़कियाँ कई बार क्लमजी सी होती हैं और मैं उन लड़कियों में सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर आती हूँ। सो कल जो है मैं पता नहीं क्या कर रही थी, शायद ये जो इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट आया है उस फीचर का उपयोग करते हुए मैंने फोटो लेने की कोशिश करी एंड मैं जो है धड़ाम से नीचे गिरी रोड पे। सबसे बेस्ट बात ये थी कि सिर्फ मैं हंस रही थी मुझ पर, बाकी और कोई नहीं हंस रहा था, वरना इंडिया पे सब लोग हंसते हैं, कोई हेल्प करने भी नहीं आता है, पहले हंसते हैं फिर उठाते हैं। यहाँ पर सबने मुझे उठाया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब जो है कतर को अपना घर कह सकती हूँ फाइनली, क्योंकि यहाँ पर अब मैं गिर चुकी हूँ एक बार। मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक जो है कतर इज ट्रीटिंग मी वेल, कतर जो है मुझे बिल्कुल किसी टूरिस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन अब घर वाली बात आ गई, क्योंकि हम जो है अपनी पर आ चुके हैं, अब हम गिर चुके हैं। बस इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन जख्मों पे थोड़ा सा ना नमक छिड़कते हुए जो है मलहम लगाने के लिए मुझे एक अच्छी आवाज़ की ज़रूरत है। बस इसीलिए दिलजीत दोसांझ का ये जो ट्रैक है मैं वापस आऊँगा से, ये जो है मेरे दिल को, मेरी चोटों को और आपके कानों को जो है सुकून देगा। गाने का नाम है क्या कमाल है, सो इस गाने को एंजॉय करके आओ, उसके बाद और भी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। मैं हूँ आपकी कसोस 106.3 रेडियो ऑल ऑफ़ पर, शो लाइफ मस्त चल रहा है, तो बस मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor. स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:15 यानी 10:15।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: देखिए अंदर ही अंदर से टूटा हुआ तो फील हो रहा है, लेकिन किसी के इश्क में नहीं। कल जो धड़ाम से मैं नीचे रोड पे गिरी हूँ, आहा मजा ही आ गया। वेलकम टू 106.3 रेडियो आलम पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए थोड़ा गिरना पड़ना तो देखो लाइफ में चलता ही रहता है, संभल के आपको चलना होता है, बिल्कुल चलना होता है, लेकिन अब आप गिर गए हो तो क्या कर सकते हो, मतलब या तो आप रो लोगे या तो आप दुख मना लोगे कि अरे मैं कैसे गिर गई हूँ, इतने सारे लोगों के सामने गिर गई, या तो फिर हंसो और आगे बढ़ो। जो लोग मेरे साथ थे वो भी ये कह रहे थे कि हम तुमको उठाने से पहले यही सोच रहे थे कि तुम इतना क्यों हंस रही हो। अब देखो मेरे लाइफ का ना एक सिंपल सा फंडा है कि आप अगर आप खुद पे हंस लेते हो ना तो बाकी लोगों को आप पे हंसने में ना मजा नहीं आता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, अगर आपको कभी भी एम्बैरेसमेंट हो रहा है तो खुद पे एम्बैरेसमेंट लेने लग जाओ तो बाकी लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन ये चीज़ सब जगह अप्लाई नहीं होती, तो किसी विपरीत परिस्थिति में ये करने के बाद मेरे पे नाम मत डालो। फिलहाल वक्त हो गया है मौसम की बात करने का। सो आज का करंट टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, आज का लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी कंपेरेटिवली पिछले 2-3 दिनों में आज थोड़ी गर्मी जो है वो ज्यादा रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कूल सॉन्ग ऑफ द आवर है ना।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
3: कुसाम ये क्या हुआ।
0: बिल्कुल श्रेया जी, यही सवाल मैंने भी पूछा था,
3: प्यार की बात
0: मैं क्यों गिर गई, ये क्या हुआ।
3: दुनिया की नजरों में आ गई हो तेरे में।
0: ये ट्रैक एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

हेमा सरदेसाई और शाहरुख खान जी की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में ना अब वो आग आ चुकी है कि अब हमें कुछ करके दिखाना है। इतने टाइम से हम शांत बैठे हुए थे, अब कुछ कर जाना है बस। वो बीच बीच में हमें भी ऐसा लगता है ना कि यार अब लाइफ पलट देंगे और बस हम कुछ अच्छा करने लग जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह बॉलीवुड ने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रण ले लिया है, क्योंकि जून में इतनी अमेजिंग मूवीज देने के बाद जुलाई भी रेडी है अमेजिंग टीजर्स के लिए, अमेजिंग ट्रेलर्स के लिए। एंड अगस्त में तो क्लैश देखने को मिलने वाला है। हाँ जी, यश की यानी वो जो केजीएफ वाले यश जी है ना, उनकी एक नई मूवी है टॉक्सिक, वो जो है अगस्त में रिलीज होने को तैयार है। एंड उसका क्लैश होने वाला है श्रद्धा कपूर की एठा से, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। सो टॉक्सिक मूवी का पूरा नाम होने वाला है अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स टॉक्सिक, और इसका इसको जो है 26th of August को रिलीज करने की बात जो है वो चल रही है। एंड अगर मैं बताऊं तो रुपीज में 600 से 850 करोड़ का जो है अभी तक का बजट जो है इस

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

किसी को दुनिया चाहिए ना चाहिए, मुझे जो है चाय जरूर चाहिए। चाय की बहुत जरूरत सी लग रही है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड पता नहीं कौन होते हैं वो लोग जिन्हें इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में भी चाय की जो है तलब लग रही होती है, चाय की ज़रूरत पड़ रही होती है। जो भी लोग हैं हम दोस्ती कर सकते हैं, देखो हम बहुत एकदम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे अगर आपको इतनी गर्मी में चाय पीने का मन होता है तो। खैर हम इस सेगमेंट में बात करते हैं कि स्ट्रेस को किस तरीके से दूर भगाया जाए। तो अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, मतलब कि प्रोजेक्ट नहीं बना है या फिर टारगेट पूरा नहीं हुआ है या फिर आज जो है अपने पार्टनर से लड़ाई हो गई है, सो स्ट्रेस किस तरीके से कम किया जाए, मैं हर रोज़ आपको कुछ ऐसे फन टिप्स बताती हूँ। सो आप एक पेपर लीजिए एंड उस पर स्क्रिबल, तो आप जानते होंगी कि स्क्रिबल क्या होता है, कुछ भी ऊटपटांग बनाना, सिर्फ लाइंस खींचना, सिर्फ गोले बनाना, लेकिन इसके साथ साथ आप इंटेंशनली कुछ चीप पेंट और एक रुमाल या एक कपड़ा लेकर जो है उस पर कोई आर्टवर्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। एंड 3 मिनट डांस पार्टी नाम का भी एक ट्रेंड जो है वो इस वक्त काफ़ी चल रहा है, जो लोग अपना स्ट्रेस कम करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। मतलब आप बस बीच में 3 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा डांस कीजिए एक आध गाने पे और फिर वापस अपने काम पे लौट जाइए, इससे स्ट्रेस भी कम होगा एंड पार्टी की पार्टी हो जाएगी। देखो

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: मैंने चला दिया है, अपना 3 मिनट डांस ब्रेक ले लो, कॉकटेल टू का ये गाना है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
0: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.

0: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो भाई स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:11 यानी 11:11।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi everyone, this is Benny Deol here. Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑफ कोर्स, जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही इधर भी होगा, क्योंकि वक्त ही ऐसा हो रहा है। हाँ जी, 11 बजे का वक्त कुछ ऐसा सा होता है कि समझ नहीं आ रहा होता है कि यार अभी नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता करना चाहिए, थोड़ा और रुक के जो है खाने खा लेना चाहिए। मेरे साथ तो देखो यही होता है, अब आपका मुझे पता नहीं। खैर, जेंजीज के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त तो देखो मुझे ऐसा लगता है जेंजीज की ही चल रही है, क्योंकि हम जेंजीज जो है ये अलग अलग चीज़ों से अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों से अपने हेल्थ के लिए जो है काम कर रहे हैं या अपनी मेंटल वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये जो तरीके हैं ये काफ़ी स्टूपिड भी लगने लग जाते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ एक ट्रेंड की, जहाँ पर इंटरनेट पर अलग अलग डोपामाइन साइट्स जो है वो अवेलेबल हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर जेंजीज जाते हैं एंड फेक ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करते हैं। मतलब साइंटिस्ट का ये कहना है कि एक इंसान के दिमाग पे काफ़ी अच्छा असर होता है, यानी उसे काफ़ी अच्छा अच्छा फील होता है जब वो किसी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करता है एंड उसे अपने घर के पास आता हुआ देखता है। मतलब वो जो नोटिफिकेशन आते हैं ना कि योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, योर ऑर्डर इज़ ऑन योर डोरस्टेप, या डिलीवरी पार्टनर इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये वाले जो नोटिफिकेशन होते हैं ना ये कहीं ना कहीं एक इंसान को अच्छा फील कराते हैं। एंड बस इस अच्छी वाली फीलिंग के लिए, क्योंकि जेंजीज ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, इसीलिए कुछ डोपामाइन साइट्स पे वो जाते हैं जहां पर एक फेक ऐप का जो है पूरा इंटरफेस बनाया गया है एंड वहां पर आप जाकर फेक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एंड वहां पर मेन्यू आप स्क्रॉल कर सकते हो खाने की जगहों पर जाकर एंड वहां पे आपको क्या क्या चाहिए आप उसे कार्ड में ऐड कर सकते हो एंड कार्ड पे ऐड करने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हो एंड देन एक डिलीवरी पार्टनर जैसा मैप बनाता है ना, बिल्कुल उसी मैप की तरह एक डिलीवरी पार्टनर आपके तरफ जो है आता हुआ दिखता भी है ऐप में एंड फाइनली जो है 30 मिनट बाद आपका ऑर्डर डिलीवर हो भी जाता है। सो बस आपके दिमाग को मेंटल जो है सेटिस्फैक्शन देने के लिए ऐसी साइट्स जो है वो आजकल जेंजीज यूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक लॉजिकल तरीका है स्क्रोलिंग से बचने का या पैसे खर्च करने से बचने का, या बस कभी कभी हमें वो मन करता है ना कि यार कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ ऑर्डर करके खा लेते हैं, या फिर तलाबाद से या शीन से या कहीं से भी बस कुछ ऑर्डर कर देते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है? 3311063 इस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ऐसी साइट्स जो है आपको लॉजिकल लगती हैं, क्या कुछ ऐसा अगर आपको यूज़ करने को जो है कहा जाए तो आप कर सकते हो, क्या ऐसा साइट जो है अगर आपको मिल जाए तो आप जाकर उसे यूज़ करोगे, बताओ मुझे। कूल सॉन्ग ऑफ द आवर के बाद जो है हम इस पर बातचीत जो है जारी रखेंगे।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: 3311063 ये नंबर है. इस बार अगर आप मुझे बता सकते हैं 3311063 डोपामीन साइट्स के बारे में आपका क्या कहना है बताइए मुझे मैसेज करके. बदन पे सितारे गाना फन्नेहा मूवी से सोनू निगम की आवाज मैं आपकी रेडियो सेट्स पर. एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

इस दिल का ही तो किया गधरा है सब. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. अब देखिए जी, बात हम कर रहे थे डोपामीन साइट्स के बारे में, यानी ऐसी साइट्स जो जेंजीज आजकल यूज कर रहे हैं अपने दिमाग के स्टिमुलेशन को जो है मेंटेन रखने के लिए. यानी 5-6 मिनट का एक अटेंशन जो है वो कहीं एक चीज से जो है दूसरी चीज पे शिफ्ट करने के लिए डोपामीन साइट्स को यूज किया जाता है. मतलब कभी कभार आपको ऐसी अच्छी वाली फीलिंग होती है ना, जब आप सिर्फ किसी फूड डिलीवरी ऐप के मेन्यू पर जो है जाकर स्क्रोल कर रहे होते हो, या फिर बस किसी शॉपिंग साइट पर जो है जाकर ड्रेसेस देख रहे होते हो. सो ये बहुत शुरुआती ADHD के जो है कुछ लक्षण, अगर मैं बोलूं तो होते हैं. मतलब कुछ अगर आपको ADHD है, सो ये कुछ शुरुआती वो सिम्टम्स हैं जो आपको दिखने लग जाते हैं. सो इसी पर हम बात कर रहे थे. एंड काफ़ी सारे लिसनर्स का ये भी कहना है कि यार ये कैसा कॉन्सेप्ट है जेंजीज, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये फेक है एंड कुछ आने नहीं वाला है आपके हाथ में. सो इस पर टाइम वेस्ट कर क्या मिलेगा. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप कुछ ऐसा करते हो, कुछ चीज़ खरीदने की प्लानिंग करते हो, या फिर स्क्रॉल करते हो, या बस अपने दिमाग को जो है सेटिस्फाई करने के लिए, अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए जो है ऐसी चीज़ें करते हो, तो उससे आपके मूड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है. पहले के ज़माने में लोग विंडो शॉपिंग किया करते थे, यानी जस्ट मार्केट में जाकर जो है दुकानों पर जाया करते थे, मॉल्स में जाया करते थे, सामान देख कर ट्राई करके वापस आ जाया करते थे. अब यही चीज़ ऑनलाइन हो रही है. सो इसे गलत कैसे कहा जा सकता है. इट्स नॉट अबाउट जेंजीज, बट इट्स अबाउट ADHD. जो लोग कांस्टेंट नहीं रह सकते, अपने दिमाग को कांस्टेंट नहीं रख सकते, वो लोग ऐसी चीज़ों को अपना ध्यान भटकाने के लिए यूज़ करते, वरना उन्हें एंजाइटी होती है, कई बार पैनिक अटैक आ जाता है, या कई बार जो है वो फोकस से जो है उनका वो हिल जाता है. सो पूरी तरीके से मैं जेंजीज को सही भी नहीं कहूँगी एंड पूरी तरीके से गलत भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ जो है साइंटिफिकली प्रूवन है. अब आपको क्या लगता है, इस पर बातचीत हम और भी कर सकते हैं 3311063 पर आकर जो है आप बता सकते हैं. खैर बहुत सारे लोग मुझे गाने प्ले करने के लिए भी कह रहे हैं, सो मैं कोशिश करूंगी कि आपके कहे गए गाने जो है वो मैं प्ले करूं. लेकिन फिलहाल रॉकस्टार मूवी से ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, से एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते.
4: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. और वक्त हो गया है दोहर की अजान का.

मेरे जैसा कोई तो आपकी लाइफ में आ चुका है, तो आपकी लाइफ की बात तो देखो बन चुकी है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड काफी देर से इम्तियाज अली जी जो है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार कशिश फैशन की बातें कब करोगे, आपने दो दिन से फैशन की बात नहीं करी है, एंड आज कब फैशन की बातें करने वाले हो, मेरा ऑफिस आने वाला है, मैं तो उस सेगमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए अच्छी चीजें जो है वो इंतजार कराती हैं, इसलिए फैशन की बात मैं थोड़ी सी देर बाद करूंगी, लेकिन आज आपको एक स्नीक पिक दे देती हूँ कि फैशन की बात में हम करने वाले हैं बात आपके चश्मों की, यानी आपके शेड्स की, आपके काले चश्मों की, जो अभी ना समर एसेंशियल बना हुआ है। मतलब इस हीट में और इस तरीके की ब्राइट लाइट में जो है किस तरीके से आप खुद को फैशनेबल रख सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी देर बाद। फिलहाल जो है ये वाला सेगमेंट है आपको मूवी रिकमेंड करने का। सो मैं आज कोई ऐसी बहुत बूजी बहुत फैंसी मूवी आपको जो है रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, मैं बस आपको ये बताने वाली हूँ कि कल मैंने कौन सी मूवी देखी। सो इस वक्त मैं देख रही हूँ सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा की एक मूवी सलाम नमस्ते। हाँ आप ये कहोगे कशिश ये तो बहुत कॉमन मूवी है, ये तो हमने देखी हुई है, लेकिन मैंने नहीं देखी हुई थी एंड मैं इतना रिलेट कर पा रही हूँ इस मूवी से क्योंकि प्रीति जिंटा जो है वो एक आरजी है। सो बहुत अच्छी मूवी है, लाइट हार्टेड मूवी है, खाना खाते खाते अगर आपको कुछ ऐसे ही देखना है यार कुछ देख लेते हैं, सो ये वो मूवी हो सकती है। सो प्लीज़ एक बार जाइए देखिए, एंड क्या आपने पहले देखी हुई है, सो 3311063 पर आकर मुझे बता दीजिए। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर का जो है वक्त हो गया है, सो ये फ्रेश फ्रेश गाना सुनिए, फ्रेश फ्रेश थॉट्स के साथ जो है स्टे ट्यून रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर और कहते रहिए जियो बिंदास। Radio

मुझे ना कदर में 5 महीने हो चुके हैं एंड कल मुझे ऐसा लगा कि फाइनली कदर ने मुझे जो है अपना लिया है, अपना समझ लिया है, अब मैं कदर को अपना दूसरा घर कह सकती हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड जैसे मैंने आपको बताया ही कि कल मैं जो है गिर गई थी अगर आपने डिटेल स्टोरी मिस करी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी यही स्टोरी बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं गिर गई। एंड उसमें जो है मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे शू लेस का एक बड़ा हाथ था, मतलब मेरी लेस खुली हुई थी, शायद इसीलिए मैं उसमें फंस के मुझसे स्टेप मिस हुई और मैं गिर गई। ओके लेकिन उसको जो है जब मैं गिरी तो मैंने अपना शूलेस बांधा था, मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो शूलेस है इसको शूलेस बोलते हैं, लेकिन ये जो कॉर्नर पे एक टिप बनी हुई है मेटल की, इसे क्या कहते हैं शूलेस की। सो देखिए मैंने ये सोचा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता है लेकिन उनका नाम नहीं पता होता है। सो बस कोशिश करूँगी मैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लाऊं। आज मैं आपको शूलेस की उस टिप के बारे में ही बताने वाली हूँ, इसे एगलेट कहते हैं। हाँ मतलब सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि ऑमलेट जैसा कुछ होगा लेकिन नहीं, शू की वो जो टिप होती है प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो क्लॉथ की हो सकती है, वो जो है मेटल की भी हो सकती है, उसे एगलेट कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई जो है आपसे बोले कि यार मेरी लेस जो है वो लग नहीं रही है, तो तुम बोल सकते हो कि यार एगलेट नहीं है ना आपके शू लेस में, दैट्स वाई वो जो है अच्छे से वीव इन नहीं हो पा रही है। ऐसे ही जो है कुछ वर्ड्स आपको पता होते हैं लेकिन बीच में आपको सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी पड़ती है जिससे आपको ये दिखाने का मौका मिले कि हाँ हमें ये वर्ड पता है, जैसे मैंने ये अपॉर्चुनिटी जो है अभी क्रिएट करी। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए। मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: पहले ना लोग कहा करते थे कि औरतों को लड़कियों को समझना काफी मुश्किल है, अब लोग कहते हैं कि जेंजीज को समझना काफी मुश्किल है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, एक जेंजी महिला को यानी जेंजी लड़की को समझना फिर कितना ज्यादा मुश्किल होगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड देखो, अगर आपके पास एक जेंजी लड़की है लाइफ में, मतलब वो आपकी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, दोस्त हो सकती है, कलीग हो सकती है, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये जेंजी जो है सारे नॉर्म्स तोड़ रहे हैं। इनके पास कोई रूल नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, इनका जो मन करता है वो कर लेते हैं, इनका जो है कुछ फेवरेट नहीं है, डाइट कोक पी लेते हैं, इनको डाइट कोक नहीं मिलती है चाय पी लेते हैं, इनको चाय नहीं मिलती है डाइट कोक नहीं मिलती है ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो अच्छे से क्यूट से सिपर में पानी डाल के पी लेते हैं। जेंजीज यार बहुत कूल है, मतलब जितना आपको लगता नहीं उससे कहीं ज्यादा कूल है। एंड अब जो है इन्होंने फोन्स को जो है वो साइड में रखने का फैसला कर लिया है। अब जैसे पहले होता था ना कि हर एक चीज के लिए एक अलग डिवाइस हुआ करता था, बिल्कुल उस तरीके से अब ये जो है आईपॉड पे, यानी वो जो छोटे वाले यू नो एक डिवाइसेस आया करते थे जिसपे हेडफोन्स वायर्ड वाले लगाकर आप गाने सुन सकते थे, रेडियो सुन सकते थे, अब जेंजीज उस पर वापस जा रहे हैं। एंड अब रेडियो का ट्रेंड जो है वो जेंजीज के बीच में बढ़ रहा है, क्योंकि कौन है वो लोग जो खुद प्लेलिस्ट बनाते हैं एंड वही गाने जो उन्होंने चुने हुए हैं वही चलाते हैं। अब जेंजीज को है थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीजें चाहिए, ऑटोमेटिकली जो है इनका कोई और गाना जो है जो इनकी प्लेलिस्ट में नहीं है वो प्ले हो जाना चाहिए, तो मजा आता है। बस इसीलिए देखो जेंजीज अब वापस लौट रहे हैं आईपॉड की तरफ और फोन को अपना साइड रख रहे हैं। आप बताइए, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपना फोन जो है वो साइड में रख कर वापस उस डिवाइस पे जाएंगे? 3311063 इज द नंबर, इस पर आकर मैसेज कर दीजिए। अमेजिंग वाले गाने इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

यार देखो, जब भी मैं फैशन वाले सेगमेंट पर आती हूँ ना, तब मैं एक ही बात बोलती हूँ, जिस तरीके से इतिहास खुद को दोहराता है, बिल्कुल उसी तरीके से फैशन भी खुद को दोहराता है। तो अगर आपके पापा मम्मी की अलमारी में वो बड़े बड़े वाले जो चश्मे हैं वो रखे हुए हैं, जिसपे किसी पे लेपर्ड प्रिंट बना हुआ है, किसी पे बहुत बोल्ड डिजाइन बनी हुई है, एंड आपको लगता था कि यार इतने बड़े बड़े चश्मे कौन पहनता है, सो अब उनका ट्रेंड वापस आ चुका है। अब बहुत एक्सट्रीमली बड़े बड़े जो चश्मे हैं, जो गॉगल्स हैं, जो सनग्लासेस हैं, शेड्स, आपको जो कहना है आप वो कह सकते हो, वो अब ट्रेंड में आ चुके हैं। सो अपने मम्मी पापा से बोरो कर लीजिए और उनकी फोटो से इंस्पायर होके जो है अब बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ऐसे ही वाले चश्मे जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। सो आपके पास ऑलरेडी मुझे पता है कि अलमारी में रखे होंगे, तो जल्दी से जाइए ग्रैब कीजिए, फोटो मुझे भेज सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मैं आपको मिल जाऊंगी। 3311063 ये मेरा जो है व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर भी आप फोटोज भेज सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा वाला ह्यूज सा चश्मा है, तो बोल्ड डिजाइन वाला चश्मा है, तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए। और फैशन ट्रेंड्स के लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए मेरे साथ, जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life

देखिए जी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग गाना सुनने के बाद अब वक्त हो गया है हमारा आपसे विदा लेने का। जी बहुत सारा फन किया, बहुत सारी फैशन की, मूवीज की और जेंजीज की हमने बात करी आज, लेकिन कल क्या क्या बातें करें वो आप अभी से डिसाइड कर सकते हैं। देखो 3311063 पर आकर मैं हूँ आपकी कसर 106.3 रेडियो ऑलिव पर। लाइफ मस्त है शो आप मेरे साथ हर रोज एंजॉय करते हो, सो बस कल भी एंजॉय करने हम आ जाएंगे। आप बता सकते हैं कि कल किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बातचीत करूं। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी हमारी बातचीत जो है जारी रह सकती है। अमेजिंग वाला कंटेंट वहां पर पोस्ट होता ही रहता है, तो जाओ यार फॉलो करो, लाइक करो और अमेजिंग वाले गाने अगर सुनने हैं सो बस यहीं पर बने रहो और आपकी कशिश के साथ एंड सभी आरजेस के साथ कहते रहो जियो बिंदास, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना और सनस्क्रीन लगाना मत भूलना।

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Olive Music Marathon. Ek ghanta non-stop back to back gaane.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
2: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: तनिषा
1: शफकत अमानतअली साहब की आवाज में इतना सुंदर गाना, इतनी सुंदर शुरुआत हुई है शो की, तो आगे तो मजा आने वाला है मेरी जान। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 11.06.3 एफएम तनिषा गिरी जी आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान।
2: काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली, वो रूप दियो रानी तू परांदे को संभाल।
1: हां जी, परांदे को संभालो, और जो कमर लचकने लगेगी इस गाने को सुन के उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा जी। रहमान साहब की आवाज में खूबसूरत गाना गुरु मूवी से, और फिर ये सुने सर।
2: बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना।
1: ब्यूटीफुल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में। हैप्पी भाग जाएगी से ये कमाल गाना अल्तमश फरीद की आवाज में, और

कमाल कमाल. एक चीज नोटिस करी आपने इन सब गानों में, तेरे बिना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, आशिक तेरा तेरा होने लगा हूं. तेरा इज द कॉमन वर्ड हियर. हां जी, दो तारीख आज 22 है. कैसे हैं आप? मंडे का दिन कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? इट वाज वेरी डी, आई नो, बट या बताइए मंडे का दिन कैसा ट्रीट कर रहा है? सब बढ़िया कि नहीं? व्हाट इज द वाइब फॉर टुडे? और ऑफिस में सब ठीक है कि नहीं? लंच वंच हुआ कि नहीं? सब जानना चाहती हूँ. आ जाओ 3311063 पर मैसेज करो और बताओ. और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, this is Air Rahman. Air Rahman. Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
5: Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network. Amen.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: श्रेया घोषाल और जावेद बशीर साहब की आवाज में बहुत ही सुंदर गाना, कितना मतलब ऐसी डिवाइन सी फीलिंग थी इस गाने को सुनते हुए। मैं ऐसे फुल वॉल्यूम में यहाँ स्टूडियो में सुन रही थी एंड मजा ही आ गया यार। मतलब यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम, तनीषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज़ जो कि मुझे रिमाइंडर मिला सडनली से इंस्टाग्राम से स्क्रॉल करते हुए, देखो डूम स्क्रॉल तो हम सभी कर रहे होते हैं पर कभी कभी उसमें काम की चीज़ें मिल जाती हैं, एंड दिस इज सच अ गुड रिमाइंडर। आई थिंक हमें ये खुद को हर रोज़ याद दिलानी चाहिए ये बात। सो इट सेज डोंट जूम इन सो मच ऑन वन प्रॉब्लम दैट यू गो ब्लाइंड टू द 1000 ब्लेसिंग्स वी ऑलरेडी आर लिविंग इन। यस, डोंट लेट अ सिंगल क्लाउड मेक यू फॉरगेट द होल स्काई मेरी जान। देखो छोटी मोटी परेशानियां तो जिंदगी में चलती रहती है, सब कुछ ऐसे सही चलता रहेगा और फ्लैट चलता रहेगा तो फिर मजा कैसे आएगा, थोड़ा अप डाउन चाहिए होता है सो दैट हम गुड टाइम्स को और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए। पर उन बैड टाइम्स में इतना उन्हें ओवरपावर मत करने दो कि जो और चीज़ें हैं ना आपके पास, जो और ब्लेसिंग्स हैं आपके पास जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उनको भूल जाओ। और द डे यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग दैट कि यू नो ये 10 थिंग्स आर देयर, एक 11 चीज़ थोड़ी सी खराब हो गई है, उन 10 थिंग्स पे फोकस करोगे ना तो वो 11 चीज़ इतनी बड़ी लगेगी नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। Yes, sending cool song of the hour is तपती गर्मी में तो बनता है जी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
1: Cool song.
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना cool song of the hour.
2: क्या बात है सर? क्या पर ये बात है?
1: Cool song.

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khur. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
4: Only laga aur ho ja recharge. Olive Recharge.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by.
1: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक
1: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply. Shine.

0: Tanisha.
1: आतिफ असलम और अलीशा चुनाव की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी से ब्यूटीफुल ट्रैक तेरा होने लगा हूँ. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज सॉन्ग्स यू नो जिसका इंग्लिश वाला लिरिक्स मुझे पहले समझ में नहीं आता था. मन से जो आ रहा है बस रिदम पे बैठ रहा है, फिट हो गया है, मैं गा देती थी. एंड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम आई यूज टू डू दैट. आई वॉज टेलिंग यू द अदर डे अबाउट प्रिटी वुमन, उसमें भी मुझे पता नहीं क्यों वो कुड़ी घुमा सुनाई देता था, मैं वही गाती थी. लेटर आई रियलाइज कि अरे तनीषा ये तो गलत हो रहा है. वेल तनीषा के साथ है आप रेडियो ऑलिव पर और बहुत ही कमाल गाना सुनाओ. और इसी कमाल इसके नहीं इसके पहले वाला जो गाना था ना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना, उस पर मुझे श्रुति जी का मैसेज आया है कि मर जावा तनीषा क्या सॉन्ग प्ले किया है, अमेजिंग, हम सब खुश हो गए हैं बस में, इस तपती धूप में राहत मिल गई है. ओहो एकदम करेक्ट बात. आई वॉज मैं तो वैसे यहाँ बढ़िया एसी में बैठी हूँ, एकदम ठंडा रखा है स्टूडियो, बट स्टिल दैट वॉज राहत यू नो इन नुसरत साहब्स वॉइस, ब्यूटिफुल इट वॉज. और ऐसे यार इस गर्मी में आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाकर मूड आपका अच्छा रखने का प्लान है मेरा. अभी जैसे जो आने वाला है सुहेल सेन और अल्तमश फरीदी की आवाज़ में हैप्पी भाग जाएगी मूवी से, दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल ट्रैक. आई डोंट नो वट इज दैट अबाउट दिस सॉन्ग बट आई जस्ट लव इट एंड आई एंजॉय इट टू द मोस्ट. तो चलो साथ में मिलकर इंजॉय करते हैं और कुछ देर में लौट कर आती हूँ एक बहुत अमेजिंग वाली न्यूज़ बतानी आपको. जी स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: फोन ले लगा और हो जा रिचार्ज. ओलिव रिचार्ज.
0: ओलिव रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 FM पर. जियो बिंदास.
2: ओलिव रिचार्ज.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: रहमान साहब और चिन्मय की आवाज में गुरु मूवी से तेरे बिना ब्यूटीफुल ट्रैक आज तो मतलब कमाल ही हो गया, क्रेजी गाने चल रहे हैं। यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के साथ ऑलिवी टॉक चल रहा है यहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि कारवा ने कतर एयरवेज के साथ जो है पार्टनरशिप कर ली है, और जो एवियोज लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं आपके, अब उनको कमाने का और भी एक तरीका है आपके पास, ठीक है। सो व्हेन यू आर लाइक बुकिंग योर कैब्स थ्रू कारवा, यू हैव टू यू नो पुट लिंक योर कारवा अकाउंट विद द कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब अकाउंट, और जो भी आपके एवियोज लॉयल्टी पॉइंट्स ऑलरेडी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द टैक्सी सर्विसेज, शॉफर सर्विसेज। और आगे जब आप कभी भी यू नो टू एंड फ्रो एयरपोर्ट के लिए जब भी यूज़ करोगे तब तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू यूज़ कारवा तो आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे एंड यू कैन रिडीम देम लेटर फॉर वट एवर यूज़ यू नो जो भी आपको चाहिए वट एवर यू कैन गेट उसके लिए आप उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। सो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब तो वो आपके काम आएंगे, जब आप यहाँ दोहा में हैं तब भी वो आपके काम आएंगे, तो ये तो बढ़िया चीज़ है। तो ज़रा चेकआउट कर लो अगर है आपके पास ये दोनों चीज़ें, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए मेरी जान, है ना। और अभी फ़ायदा उठाओ इस फ्रेश सॉन्ग का ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास।
1: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: लगा और हो
0: जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
6: दोहा बैंक
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: तनीषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और भाई दोहा बैंक और लुलू आपके लिए जो कमाल ऑफर लेकर आया ना, इट विल मेक योर शॉपिंग मोर rewarding and amazing. जी, all you have to do is just apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card, or you can get up to 500 रियाल का Lulu Shopping Voucher. And not just that, जब भी आप Lulu Store पर spend करेंगे, आपको 5% savings मिलेंगी Lulu Points के form में, तो वो आप बाद में redeem कर सकते हैं. Also, you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals or lifestyle privileges. बस card activate करना है Lulu पर, एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं. दैट्स ऑल. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th जून ओनली, सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए. और सुन रही है रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
0: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक
0: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

की आवाज में MP3 मूवी से टाइटल ट्रैक ऑन रेडियो 106.3 FM दनीशा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और कतर म्यूजिक एकेडमी को मिल गया है प्रेस्टीजियस म्यूजिक एक्रेडिशन. मैं इसको इतना स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन इज लाइक दैट एंड द स्पेलिंग इज MUSIQUE विच स्टैंड्स फॉर म्यूजिक क्वालिटी एनहांसमेंट. और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इवेल्यूएट करती है एक्सेलेंस इन म्यूजिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एंड कतर म्यूजिक एकेडमी हैज़ बीन डूइंग ग्रेट जॉब. दैट्स व्हाई दे डिजर्व इट वेरी वेल. सो ये जो QMA का कमिटमेंट जो है टुवर्ड्स क्वालिटी टीचिंग लर्निंग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम प्रोफेशनल म्यूजिक ट्रेनिंग और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इसे देखकर उन्हें इस म्यूजिक एक्रेडिशन से तराशा गया है नवाजा गया है नॉट तराशा गया नवाजा गया है. एंड जो कतर म्यूजिक एकेडमी है वो बहुत कई डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स अवेल करवाते हैं जैसे कि अरब और वेस्टर्न म्यूजिक ट्रेडिशंस जो हैं उनको भी कवर किया जाता है उसमें एंड इट हेल्प्स यू नो डेवलपिंग यंग म्यूजिशियंस इन कतर एंड द रीजन. सो इट इज़ सच एन अमेजिंग थिंग कि यू नो कल्चर को और अपनी रूट्स को साथ में लेकर वेस्टर्न म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है.

ओहो रफी साहब और आशुताई की आवाज में जाने वाले बहुत ही सुंदर गाना लुटेरा मूवी से मोहन कानन की आवाज में शिकायतें जियो बिंदास मेरी जान

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को कीजिए सर्टिफाइड. बनिए सर्टिफाइड के साथ. बनिए.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
4: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
3: ऑलिव रिचार्ज.
5: This hour is brought to you by.
6: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
7: दोहा बैंक
6: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: You are listening to Radio Oliver 6.3 FM. The Nisha Abke is Sad Oliver Chal Raha Hai Abar.
1: Wacky Wisdom.
0: Mein aaj hum baat karenge word weird ki. Ji haan. W-E-I-R-D. Weird jo ye word hai, iska meaning hame kya pata hai? Hame pata hai ki jo ajeeb hai, jo strange hai, है ना उसे हम वियर्ड कह देते हैं बट इनिशियली इसका मीनिंग होता था फेट या फिर डेस्टिनी एंड इसको स्पेल करते थे WYRD अब ये WYRD से WEIRD कैसे बना वो स्कॉटिश राइटर्स की देन है उन्होंने इवेंचुअली इसका स्पेलिंग चेंज कर दिया लेकिन मीनिंग तब भी फेट और डेस्टिनी ही था देन शेक्सपियर आए शेक्सपियर साहब अपनी स्टोरी लेकर आए मैकबेथ जिसमें तीन सिस्टर्स थी एंड दे आर फेमसली नोन एज थ्री वियर्ड सिस्टर्स वियर्ड वहाँ पर भी इसीलिए उन्हें कहा गया क्योंकि वो लोगों का फेट वो उन लोगों की डेस्टिनी उनका फ्यूचर बता सकती थी दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड वियर्ड सिस्टर्स बट जो उनका लुक था वो थोड़ा सा फ्राइटनिंग और स्ट्रेंज और स्कैरी था सो वहाँ से लोगों ने लुक्स पर जाकर मीनिंग निकाला कि वियर्ड का मतलब होता है अजीब Strange, which is not very common. And ये meaning 19th century तक इतना ज़्यादा फैल गया है लोगों को ये ज़्यादा आसान लगा You know, negative चीज़ें वैसे भी हमें आसान लगती है accept करने में तो यही accept कर लिया गया and that is how weird, जो कि fate और destiny होता था उसका meaning आज तक हम strange या फिर अजीब ही मानते हैं Yeah, so that's the story of word weird and that is actually very weird, very strange. Sending mascara Nilanjana Ghosh ke awaaz mein. Stay tuned on Jio Bindaz.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: तनिषा
1: रहमान साहब के आवाज में हाईवे मूवी से माही वे ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिवरी चार्ट चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो गया है जेम्स का आज का जो मेरा सवाल है ओहो इतना आसान सवाल है आ ही जाना चाहिए देखो ये तो ठीक है इस पे मेरी काफी उम्मीदें हैं सो द क्वेश्चन इज विच इज द इजिएस्ट बिल्डिंग टू लिफ्ट विच इज द इजिएस्ट बिल्डिंग टू लिफ्ट अभी देखो लॉजिक पे नहीं जाना कि तनिषा बिल्डिंग कैसे हम उठा सकते हैं नो दैट इज नॉट राइट लेम सवाल का लेम जवाब होना है सो बताइए कि कौन सी बिल्डिंग को लिफ्ट करना सबसे ज्यादा आसान है 3311063 पर मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर एंड स्टेडियम टू रेडियो ऑलिव कॉकटेल 2 से बंधु 2.0 भेज रही हूँ थैंक गॉड इस गाने के साथ यू नो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है मैं छेड़खानी बोलना चाह रही थी सो या नहीं करी है एंड उसका जो एक जिस्ट था ना उस गाने का जो फ्लेवर था वो अभी भी मेंटेन है तो आइए एंजॉय करते हैं साथ में संतरे रेडियो ऑलिव जियो बिंदास मेरी जान

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: हाय, मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Only laga aur ho ja recharge.
6: Olive recharge. Tanisha ke saath.
7: Olive recharge. RJ Tanisha ke saath. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindaas.
8: This hour is brought to you by.
9: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
10: दोहा बैंक,
9: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: तनिषा
1: रहमान सावर श्रीनिधि की आवाज में ओके जानू सी टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के साथ सुना आपने तो आज का मेरा सवाल था विच इज द इजिएस्ट बिल्डिंग टू लिफ्ट और मुझे जवाब आया है बॉडी बिल्डिंग कहाँ से बिल्कुल भी नहीं इतना कष्ट वाला काम होता है जितना दर्द उसमें होता है वो तो भाई साहब क्रेजी है तो इट इज नॉट द इजिएस्ट बिल्डिंग टू लिफ्ट सो दोज हु हैव ट्राइड टू गिव द आंसर बॉडी बिल्डिंग नहीं मेरी जान ये सही नहीं है एक बार और कोशिश कीजिए अभी तक मुझे सिर्फ एक करेक्ट आंसर आया है वो मुझे भेजा है अनफस साहब ने जी सो एक और मौका दे रही हूँ जरा सोचें लगाएं दिमाग लेम वाला आंसर ढूंढने में ठीक है कि कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो कि इजिएस्ट है टू लिफ्ट विच इज द इजिएस्ट बिल्डिंग टू लिफ्ट सोचें जरा 3311106 पर मैसेज कीजिए अच्छा हिंट दे देती हूँ उसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि अरे भाई ये तो काफी ईजी हो जाएगा यस अब इससे ज्यादा तो मैं हिंट नहीं दे सकती और सोचो थोड़ा सा स्कूल में भी पढ़ा इसके बारे में तो हमने 3311106 पर विच इज द इजिएस्ट बिल्डिंग टू लिफ्ट सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आशुदाई की आवाज में रात शबनमी स्टे ट्यून ऑन रेडियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक,
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: Tanisha.
1: इस गाने के पहले जो सीन होता है जिसमें वो दो अलग अलग चप्पल का जिक्र होता है, ओह इट इज टू गुड. द टाइमिंग इज रियली नाइस ऋतिक रोशन की उसमें, और करीना कपूर की जो ओवर एक्टिंग थी माशाल्लाह कमाल. और भाई लेम जैम्स का सवाल पूछा था मैंने. So the question was, which is the easiest building to lift? पहले मुझे जवाब आया बॉडी बिल्डिंग, जो कि बिल्कुल नहीं होता है, बहुत मुश्किल. फिर किसी ने कहा वेट लिफ्टिंग, ये भी नहीं. बट उसके बाद जो ऐसे लड़ी लगी है यहाँ जवाबों की, वो भी सही वाले, दिल बाग बाग हो गया मेरा, गार्डन गार्डन हो गया जी. यस, सो आई गॉट आंसर्स फ्रॉम इरफान, सुनीता, अनफस का तो मैंने बता ही दिया था, ताहिर, अजीत, मोहम्मद, इमरान एंड सुमिया, देन देर इज प्रेम, देर इज अनदर मोहम्मद. ऑल दीज पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड यस द करेक्ट आंसर इज लाइट हाउस. क्योंकि लाइट होता है ना वो, तो उसको या यू नो यू गॉट द जिस्ट राइट. देखा क्या बच्चियों में गाना चला के. This beautiful track is coming in a bit. Me too, meri jaan. Par hum to saath saath hain. ये भी आएगा कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे सुखविंदर साहब की आवाज में. एक था टाइगर से बंजारा, ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान, तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

एक मैं और आप सब, दिस इज द बेस्ट पेयरिंग यार. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ ऑल ओवर जॉर्ज चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का. मेरी जान, लौट कर आऊंगी कल दोपहर 2 बजे. बहुत ज्यादा याद आए तो बिंदास कभी भी मैसेज कर देना. वी आर अवेलेबल फॉर यू. आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, radioolive.qsz हैंडल. कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं तो पार्टिसिपेट कर लो. जी जी तो जाओगे बढ़िया बढ़िया वाले तोहफे. एंड 3311063 तो आपको पता ही है. जो भी बात है दिल में शेयर करना चाहते हैं बिंदास आ सकते हो यार. हम सुनने के लिए बैठे हैं यार. बात तो कर ही रहे हैं पर सुनते भी हैं. सो यू कैन जस्ट टॉक इट आउट. एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें सिर्फ अपनी दिल का हाल जो है वो एक्सप्रेस करना होता है. हमें कोई सजेशन नहीं चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस कोई सुन ले इतना ही काफ़ी होता है. तो वी आर देयर फॉर यू. यू कैन कॉल अस एनी टाइम. ओके 4444106 इज द नंबर. बस अपना ख्याल रखा करो मेरी जान. आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. इस बात को कभी नहीं भूलने का है. एंड आई मीन इट. इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. नो, यू आर इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और इतनी गर्मी में पानी पीना नहीं भूलने का है. ठीक है, पानी पीते रहा करिए वक्त वक्त पे. स्टे हाइड्रेटेड और भर भर के सनस्क्रीन भी लगाओ क्योंकि क्रेजी हाल और खाए जी. और बस सुनते रहो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. जी बिंदास मेरी जान. रेडियो

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

चाहिए होता है कि कोई आपसे बोल दे कि बहुत सारा प्यार है यार, और मुझे आप लोगों से 100 किलो वाला प्यार है। 4 घंटे में भी अपने होने वाले हैं आज, तो भाई गर्मी बड़ी तगड़ी है यार, स्वेर। एंड कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छे से अपने आपको हाइड्रेट किया, पानी वानी पिया, और गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज दीजिएगा। और क्या रहेगा सारा कुछ, कोई बात नहीं, अभी तो आई हूँ, अभी थोड़ी सांसें ले लेते हो और आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर में आऊंगी, आप लोगों के मैसेजेस आ जाने चाहिए। एक नंबर गाने बजेंगे बेबी।

चढ़ेगा बुखार, ओए होए होए, देखो गर्मी वाला बुखार नहीं चढ़ना चाहिए बस। सुन रहे हो रेडियो ऑलिव कोर के दिनों जियो बिंदास, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हो डार्लिंग।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडो ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
3: जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: अभी तो बोल। चलो दोनों राजी हो गए मोहब्बत के लिए। 5:19:15 स्टूडियो की घड़ी पे आपके साथ एक जरूरी बात आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बताना जरूरी आप लोगों से प्यार है। कभी कभी हम ऐसी हरकतें कर देते हैं और हमको नहीं पता होता है रूल्स के बारे में, है ना। सो जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक्सीडेंट जो है वो देखते हैं रोड पे कहीं पे, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रिपोर्टर बने रहते हैं। भाई मैं सबसे पहले इसका वीडियो फोटो करूंगा और मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, मेरे को सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे और मैं ही बन जाऊंगा आज तो रिपोर्टर। सो लेट मी टेल यू, इन कतार अगर आप सोशल मीडिया पे कोई किसी भी एक्सीडेंट की फुटेज जो है वो डालते हैं, सो आपके ऊपर फाइन हो सकता है, अप टू 10,000 कतरी रियाल का फाइन होगा। लीगल एक्शन तो होगा होगा, वो अलग बात है, बट अगर आपको रिपोर्ट करना है एक्सीडेंट से जुड़ी हुई, आपको रिपोर्ट करनी है, मतलब ये आपसे रिलेटेड है, है ना। सो आप जो है वो मेट्राश के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हो, बट फॉर फन फॉर व्यूज अगर आप किसी भी एक्सीडेंट का वीडियो फोटो बना के अपलोड कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग डार्लिंग, नहीं करना चाहिए। बाकी लोग भी पैनिक करते हैं इन सारी चीजों को देख के। सो जितना हो सके सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें पोस्ट करें जो मोटिवेट करें, जो लोगों को खुश करें, उनका दिमाग ना खराब करें, समझ रहे हो। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: सोने हो कितना दिखी अलजन सस्विया काल सिमरन गौरी आपके साथ। समीरा जी ने इतना प्यारा मैसेज लिख के भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत सारा प्यार और क्या चाहिए यार। हाय इतना सारा राइम कर दिया मैंने तो।
1: मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ,
0: लवेरिया हुआ, बस लवेरिया हो जाए बहुत बढ़िया बात है, मलेरिया नहीं होना चाहिए, बहुत ही गंदे वाला किया था मैंने, बट दैट्स हो गया, अपने कतर में हो भी नहीं सकता, मच्छर वच्छर है नहीं है ना यार, तो अपना ध्यान रखो। और आज के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में बताऊं, आज रात 8 बजे जो है वो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच में मैच होने वाला है, और रात में भी मैच होने वाला है, यानी कि 23 तारीख जो है वो हो जाएगी रात के 12 बजे जो है फ्रांस और इराक के बीच में होने वाला है, एंड फिर सुबह के 3 बजे नॉर्वे एंड सेनेगल के बीच में होने वाला है। सो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, टेल मी ओके। सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास।
2: ये खेल है ब्लॉकबस्टर
3: in association with
4: download the city exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
5: Also palm swiss gold bars are now available at the best price at city exchange,
4: your trusted remittance partner.

0: for the newly married? Cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मलबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
2: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
1: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

अच्छी मुझे कह रही है झूठ तो बात 1% भी नहीं है यार। 5:49 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है और समर टाइम है। समर टाइम पे आपको पता है कि अलग तरह के कपड़े जो है हम पहनते हैं, है ना। ऑफिस में तो हमारे तो ऐसे ही, हमको लगता है सर्दी चलती रहती है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो हम तो हमेशा ही ब्लेजर व्लेजर में और जैकेट में घूमते रहते हैं। बट यस, अगर बात करें बाहर जाने की, तो समर शॉपिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फैमिली समर शॉपिंग एग्जीबिशन 2026 जो है वो कटारा हॉल 12 में होने वाला है। 27 जून से स्टार्ट होगा, ये 3 जुलाई तक चलने वाला है। सुबह 10 से लेकर रात के 11 बजे तक आप कभी भी जाइए। सो टिकट्स वगैरह की जरूरत नहीं, इट्स कंप्लीटली फ्री। सो अपने फैमिली के लिए कपड़े जो हैं वो आप खरीद सकते हैं और एग्जीबिशन है, मजा आने वाला है आपको। 5:50 स्टूडियो की घड़ी पे, क्या आपको मजा आ रहा है रेडियो ऑलिव सुन के, जबरदस्त इवनिंग सुन के? ऑफकोर्स यस, बताओ ना यार।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: लॉन्ग ड्राइव पे ऑफिस से निकलने के बाद चले जाना, लेकिन ऑफिस के अंदर अगर घूम रहे हो ना तो ज्यादा घूमना मत, क्योंकि पैसे कट सकते हैं आपके। मैं यही सोनिया की तरह हलचल सोच रही है, सिमरन कौर है आपके साथ, बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: चलते फिरते हो और दूसरों के लिए जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट होती है। एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आपको जो है वो ये नॉन वर्किंग आवर में करना, वर्किंग आवर में जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा सा ही चल सकते, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2 laps पर आर जो है वो आप चल सकते हो ऑफिस के फ्लोर पे। सो बताओ यार, यहाँ पे मतलब ठीक है तुम वॉशरूम में कितना टाइम लगा रहे हो, वो वाली न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तुम बाहर जाके ब्रेक्स में कितना टाइम लगा रहे हो, उसमें चलो जेन्युइनली बनता है कि ठीक है अगर आप ऑफिस आवर्स में ब्रेक ले रहे हो और ब्रेक वो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन भाई अब चलने में भी ब्रेक लगाओगे तुम सीरियसली मतलब कुछ भी चलता है। थैंकफुली हमारे एचआर जो है बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये क्या चल रहा है, मतलब कल को ये भी न्यूज आ जाएगी कि भाई आपने ड्यूरिंग वर्क आवर जो है बहुत ज्यादा सांसें ले ली हैं। ओह माय गॉड, सैया जी से छोड़ो, पहले ऐसी कंपनी से ब्रेकअप कर लो। एंड रिसर्च का क्या जो बोलती है कि हर घंटे में आप जो है 3 मिनट के लिए उठो, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हो

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Amira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Binda.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: फीलिंग्स स्ट्रांग
1: बिल्कुल सिमरन कौर है आपके साथ। गर्मी से मेरा ब्रेकअप करवा दो यार, नहीं सही जा रही। पूरे दिन में तो आज फट्टे चक दिए थे यार गर्मी ने, 45 डिग्री सेल्सियस था लेकिन फील्स लाइक 47 डिग्री सेल्सियस था। अभी के लिए टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस है एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 14 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 32% है। सो ये है मौसम के हाल। आपके हाल खराब ना हो, अपने आप को हाइड्रेट रखना यार।

0: ट्रैक यार, बस थोड़ी देर में गाना सुनेंगे, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और गेदर ये जियो विंदा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Life 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, healthy smiles anytime.
3: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दोस्तों गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी पिए और उसके साथ एकदम प्रोटीन लोडेड कैरेट केक खाया भाई साहब सिनेमन टच के साथ, मजा आ गया। मैंने सोचा चलो ऐसे ही आपको बता देती हूँ। आई नो बाहर बहुत गर्मी है लेकिन स्टूडियो में बहुत बहुत बहुत बहुत ठंडी है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: जरूरी है। खाने की बात से याद आया, जब छोटे थे है ना तो खाने को लेकर जो थे हम, पैसे जो थे हमको मिलते थे वो अपने पेरेंट्स से हमको मिलते थे, और जैसे ही हम बड़े हुए है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम पैसे कमाने लग गए हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, उसमें हमको पेरेंट्स से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया, अब कैलोरीज वाला पंगा आ गया यार। अब कैलोरीज नहीं बचती है खाने के लिए, अब शुगर अवॉइड करते हैं, अब हाई कार्ब्स अवॉइड जो है वो करते हैं, हाई प्रोटीन चाहिए। आज की कैलोरी डेफिसिट में है तो आज की कैलोरीज कंप्लीट हो गई हैं, अब नहीं खा सकते यार। ये अलग पंगा चल रहा है। बचपन में जब छोटे होते थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, जो मर्जी खाओ, सिर्फ इंतजार रहता था मम्मी पापा से पैसे लेने का। मजाक हो गया हमारे साथ, अब पैसे हैं अपने लेकिन कैलोरीज का क्या करें।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
3: Football boundaries नहीं जानता, और Qatar का culture कोई limits नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.

हाँ जी ये क्या हो रहा है दुनिया में, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इस बात को सुनने के बाद आप भी यही बोलने वाले हैं। मैं क्या जी सोनियों के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। सो एक 36 साल की यू नो इन्फ्लुएंसर ने एक साल के लिए जो है वो शादी की। सो उसने शादी की अपने आप से, किसी इंसान से नहीं, अकेले शादी की, क्योंकि उसका ये मानना था कि भाई अकेले ही रहना लाइफ में अच्छा है, दिस एंड दैट। लेकिन विद इन अ ईयर वो बोर हो गई। उसने बोला कि नहीं यार ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, और कहती है कि इस एक साल में 10 सोलो कपल थेरेपी के लिए भी जा चुकी है। ओ माय गॉड, उसको कोई और थेरेपी की जरूरत है मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक साल बाद उसको डिसाइड हुआ, उसने अपने आप से को डिवोर्स दे दिया, अपने आप से तलाक ले लिया, और कहती कि नहीं अभी वो डेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है क्योंकि अकेले नहीं रहा जा रहा है। कुछ भी कुछ भी चल रहा है यार लाइफ में। बात तो ये आइडिया उसके दिमाग में अकेले शादी करने का डाला किसने भाई, अगर अकेले रहना तो रह लो, तो ये अकेले से शादी करना उसके बाद सोलो कपल थेरेपी पे जाना मेरे दिमाग से बाहर है यार ये चीजें। देखो बुला रहा हूं उनको, ये सुनते रहो रेडियो ऑलिव पर, कहते रहो जियो बिंदास। एंड बंदर फिल्म से ये गाना बहुत ही प्यारा है, एक अलग ही जोन में लेके चला जाता है यार आपको। आय हाय।

0: एप्लीकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया नो मैटर वेयर द गेम इज आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है Culture travels, football connects. And Hiwari is bringing Qatar to the world.
2: Hi, this is Kailash Kher. And you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हाँ जी यार, इस गाने में जो नोक झोंक चलती है ना कि एक तो प्यार के खिलाफ है और एक को प्यार से प्यार है, दोनों का प्रभु देवा और माधुरी दीक्षित, बहुत ही प्यारा गाना है। नेक्स्ट टाइम जब आप सुनेंगे तो थोड़ा सा और ध्यान से सुनना कि प्यार जिंदगी भर हर खुशी प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा खिला गया, प्यार धोखा है प्यार ये है फलाना ढोंगा ना, समझ रहे हो? अलग लेवल पे चलता है, मेरे सुर बड़े गंदे हैं पर प्लीज हंसना मत, बट जो बात कह रही हूँ वो समझ जाओ यार।

0: उमर हम ऐसे जैसे अभी ये दूरी मिटाते हैं और आपको बताते हैं
1: जेंजी जेंजी
2: अच्छा जी
1: ऐसे है क्या दा दा
0: दा। कुक जब वर्ड आता है सी डबल ओ के कुक का मतलब होता है खाना पकाना या कुक जो शेफ होता है जो खाना कुक करता है वो वाला लेकिन जेंजी डिकोडेड में ये वर्ड हम डिकोड करने वाले तो इसका मतलब वो नहीं है। कुक का मतलब इसमें ये होता है कि जब कोई अपना काम करने चाह रहा है या अपने आप में कुछ भी करना चाह रहा है हम बोलते हैं ना लेट देम कुक लाइक जो उनको करना है वो करने दो तो इसका मतलब खाने से रिलेटेड नहीं है ये काम है काम। 7:21 5 सेकंड स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है सिमरन गौरी आपके साथ जियो बिंदास। इस घंटे हम नेम गेम भी खेलने वाले हैं तो तैयार हो जाइएगा।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

और देखना अब तो देखो यार प्यार में पड़ा हुआ मर्द बड़ा खूबसूरत लगता है यार पर सच्चा प्यार बहुत कम मर्दों को होता है यार मैं कह सुनियो कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुडे नाल एंड देखो प्यार जो है ना वो आपका रेडियो ऑलिव के लिए भी बरकरार है यार वो हमको हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी दिखता है हमारे मैसेजेस के थ्रू भी दिखता है हमारे कॉल्स के थ्रू भी दिखता है लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे लिसनर्स हैं जो कि हमको रेगुलरली सुनते तो हैं लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा रेडियो ऑलिव के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब का हमारा चैनल भी है अच्छी अच्छी इंटरव्यूज अच्छे अच्छे पॉडकास्ट जो है हम वहाँ पर अपलोड करते हैं कतर से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन होती है सो वो ऑथेंटिक वाली होती है तो उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी और कोई सेकेंड थॉट है उसके ऊपर नहीं एकदम सही वाली इंफॉर्मेशन नाम अपलोड करते हैं और बहुत सारे फनी रील्स भी बनाते हैं सो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो कर लीजिए एंड रेडियो वाली की एप्लीकेशन जैसे आपका फोन है ना फोन के अंदर जरूर होनी चाहिए ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो रेडियो वाली को मिस नहीं होना चाहिए आपका रेडियो वाली ऑन रहना चाहिए एंड रेडियो वाली ऑन रखिए थोड़ी देर में नेम गेम खेलने वाली हूं और लेने वाली हूं आप सबके नाम सुनते रहिए रेडियो वाली को और कहते रहिए जियो बिंदास 4 3 2 1 एंड गो

0: 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

चुके हैं 51 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे। सिमरन कौर आपके साथ है और आप भी तो मेरे साथ हो, लेकिन कौन कौन हो, आपका नाम क्या है ये तो बताना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे लूं, तो आपको मुझे अभी के अभी रेडियो पे अपना नाम जो है वो लिख के भेजना पड़ेगा 3311063 पर। जी हाँ, 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए, नो हाई नो हेलो, ये रूल्स हैं यार, ठीक है। चलिए मैं नाम पढ़ने जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। समीरा, काश्मीर, इमरान, अनम, फातिमा, सफदर, विष्णु, अगस्त्य, विष्णु, ओके, शोएब, राजा, उस्मान, अनम, पाली, थैंक यू सो मच, जुनैद जी, थैंक यू सो मच, डेजी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, किरण जी, थैंक यू सो मच, शुभो जी, थैंक यू सो मच, नारायण जी, थैंक यू सो मच, वसीफ जी, थैंक यू सो मच, किरण जयराम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अनम सैयद, ऑलरेडी आपका नाम हो गया है, फर्राज टाइगर जी, थैंक यू सो मच, ए आर रहमान, सलीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शिवा जी, नंदीप जी, थैंक यू सो मच, नंदीप आपका नाम बड़ा प्यारा यार, जखरिया खान जी, थैंक यू सो मच, शिवा, थैंक यू सो मच, नबील कुरैशी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली अपना नाम लिखो दोस्त 3311063 पर। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच, तीरथ प्रसाद जी, थैंक यू सो मच, जरीना जी, थैंक यू सो मच, फिलिप जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रहमान जी बहुत बहुत शुक्रिया, विष्णु, शिवा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जिन जिन का नाम ले लूँ ना दोस्त, प्लीज़ वो वापस से नाम ना लिखे, था कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ यार। सोमू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हरमन जी, थैंक यू सो मच, हाजिर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, महमूद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। हुज़ैफा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सतीश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। सांसें चढ़ गई हैं मुझे अब। अगर आपने अपना नाम सुन लिया है ना, तो थैंक यू लिख के भेज दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो मुझे भेज दो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर्स मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ये रोमांटिक नंबर सुनते सुनते तैयार हो जाइए एक चुटकी सॉन्ग खेलने के लिए। MS धोनी फिल्म से अरमान मलिक की आवाज 3, 2, 1 एंड गो।

0: दिमाग पे थोड़ा सा और जोर जो है वो लगा सके। सो आज एक चुटकी सॉन्ग में मैं आपको एक चुटकी नहीं दो तीन चुटकियां डाल के दूंगी।
1: रेडियो ऑलिव पर एक चुटकी
2: सॉन्ग। बहुत बढ़िया
0: चलो अब ये एक चुटकी सॉन्ग में आपको सुनाने वाली हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है।

बताओ ये कौन सा गाना है यार, अब तो पता लग जाना चाहिए। सो जवाब देने के लिए लिखना नहीं है, प्लीज वॉइस नोट भेजना है। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और गाने का नाम बताइए। गाना गाना चाहे तो गा सकते हैं 3311063 पे, वॉइस नोट भेज दीजिए।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप जस्ट

0: ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ।
2: बहुत बढ़िया।
0: सो आज एक चुटकी सॉन्ग को तीन चार चुटकी जो है वो मैंने कर दी है, क्योंकि आप लोगों का ये कहना है कि पहचानने में सिमरन मुश्किल हो जाती है, थोड़ा ज्यादा म्यूजिक चलाया करो।

0: चलो अब आप लोगों के जवाब सुनते हैं.
1: हेलो सिमरन, हाउ आर यू?
0: गुड यार.
1: माय नेम इज एवन एंड द सॉन्ग इज तुम मिले दिल खेले. थैंक यू, बाय
0: बाय. थैंक यू.
2: हाय सिमरन.
0: हाय,
2: मेरा नाम हुसैन है. और ये गाना जो है ना, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए.
0: बस बस, थैंक यू सो मच जी. जवाब चाहिए यार आपका.
3: हे सिमरन.
0: हे,
3: तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. ये है गाना.
0: ब्यूटीफुल.
4: हेलो सिमरन, गुड इवनिंग.
0: वेरी गुड इवनिंग.
4: जो सॉन्ग आपने पूछा था वो है तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए.

0: हाय हाय,
1: नागार्जुन वाज माय फेवरेट।
0: थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ
2: हाय सिमरन,
0: की
2: हाल चाल है?
0: बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: पूनम हियर एंड द सॉन्ग इज तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए।
1: आई थिंक दैट्स
0: पूनम, कितनी प्यारी है यार। इन्होंने ना एक कहती तू मिले गुल खिले, बहुत ज्यादा ब्लंट हो गया पूनम जी ये। लेकिन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सब के मैसेजेस के लिए। बड़ा मजा आता है यार जब इस तरह से आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। गाने से, म्यूजिक से स्ट्रेस जो है ना वो पूरे दिन का आपका जाता है, तो आप गा लिया करो यार हर रोज।
3: वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।
0: और इस लड़की के लिए क्या है

0: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गते

0: जी दीवानी रात भी आ गई बेबी सिमरन कौर भी वापस आ गई मैं क्या जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल जाते जाते एक और गाना बता देती हूँ क्योंकि शो के आखिरी दो गाने
1: दोनों में जो था मैं वो नहीं
0: ओए होए होए मैं वापस आऊंगा से ये गाना है बस थोड़ी देर में सुनेंगे एंड अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा फिर बाद में ये बोला जाता है अरे यार ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है दिस एंड दैट लोग देखते नहीं है कदर नहीं करते हैं यार कभी कभी है ना सो जरूर देखिएगा थोड़ी सी आपको इमोशंस में ये मूवी जो है बहा देगी थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा थोड़े से इमोशंस जो है वो आपको इसमें खर्च करने पड़ेंगे समझ लगेगी आपको ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म है इम्तियाज अली की ऑफकोर्स कल शाम को 5 बजे फिर से होती है जबरदस्त इवनिंग्स में मुलाकात टिल देन खाते भी दे रहो ऐश कर दे रहो चेहरे वड्डे वाली स्माइल रखो किसी का दिल मत दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सौ किलो
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
0: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
2: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो आज एक ऐसी किताब की बात करते हैं सबसे पहले जिसका टाइटल ही थोड़ा सा डेंजरस लगेगा आपको सुन के. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बुक बिफोर ऑल्सो, बट हर दिन मैं कुछ नए चैप्टर्स, नए किताबों के लेसन लेकर आती हूँ. तो किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड. यस, अब सोचिए हम बचपन से ये सीखते आए हैं और हमें सिखाया आता जा रहा है कि सबको खुश रखना होगा, सबको इम्प्रेस करना होगा, सबको पसंद आना होगा. लेकिन ये जापनीज बेस्ट सेलर एक बिल्कुल उल्टा सवाल पूछती है. क्या होगा अगर सबको खुश रखने की कोशिश में आप ये कोशिश ही बंद कर दें? और ऑनेस्टली ये सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन किताब सेल्फिशनेस नहीं सिखाती, ये फ्रीडम सिखाती है. ऑथर जो हैं वो साइकोलॉजी पर बेस्ड एक आइडिया डिस्कस करते हैं. अल्फ्रेड ऑथर का नाम है कि लाइफ की बहुत सारी एंजाइटी इसीलिए होती हैं क्योंकि हम लगातार सोच रहे होते हैं कि लोग क्या करेंगे और क्या कहेंगे. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिसर्च कहती है कि एवरेज इंसान दिन भर में कई बार अपनी इमेज के बारे में सोचता है. लेकिन फनी बात क्या है कि दूसरे लोग भी अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं. यानी हम जितना इमेजिन करते हैं लोग उतना हमें ऑब्जर्व करते नहीं हैं. और शायद फ्रीडम वहीं से स्टार्ट होती है जब अप्रूवल से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी इम्पॉर्टेंट लगने लग जाए. तो आज जो सवाल है आपसे यही है कि आप कितना इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों के ओपिनियन से, और क्या कभी आपने कोई डिसीजन सिर्फ इसीलिए बदला है क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM और ये है मिडनाइट लाउंज.

So now let's talk about one more thing. कभी आपने खुद से बात की है, मतलब अरे यार चाबी कहाँ रख दी, चलो यार आज ना काम करते हैं, क्या यार क्या कर रही हूँ मैं? अगर आंसर यस है तो मैं आपको बता दूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर लोग खुद से बात करते हैं. और इसे क्या कहा गया है, इसे क्या नाम दिया गया है, विच इज़ इनर स्पीच. सो एक फैक्ट बताती हूँ, साइंटिस्ट कहते हैं कि सेल्फ टॉक एक्चुअली जो हमारे अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है उसे इम्प्रूव करता है. एथलीट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इसे ही, राइटर्स यूज़ करते हैं, पब्लिक स्पीकर्स इसे यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं इनर स्पीच, और हम सब अनोइंगली यूज़ करते हैं. और एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, कई सारे मल्टीलिंगुअल लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में सोचते हैं, ऑफिस के बारे में इंग्लिश में, घर के बारे में हिंदी में, इमोशंस किसी और लैंग्वेज में. ये सब कितना अमेजिंग है ना, दिमाग में मल्टीटास्किंग करते रहते हैं लोग. सो आप मुझे बताइए कि आपका इनर वॉइस किस लैंग्वेज में सोचता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, या फिर हिंग्लिश, या फिर कोई मिक्स प्लेटर चल रहा होता है, बताइए मुझे. 3311063 पर यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है मिडनाइट लाउंज.

जब भी बात कहानियों की आती है तो लोग हमेशा प्यार की बात करते हैं, लेकिन आज प्यार की नहीं दोस्ती की बात करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें जितनी लव स्टोरीज दी हैं उतनी ही यादगार फ्रेंडशिप्स भी दी हैं। जय वीरू की दोस्ती, मुन्ना भाई और सर्किट वाली जो दोस्ती थी, आकाश समीर और सिड वाली दोस्ती, फरहान और राजू वाली दोस्ती, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोमांस वाली फिल्म हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन दोस्ती वाली फिल्म बार बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि दोस्ती हमारी चूजन फैमिली होती है, मतलब जिसे हम खुद पसंद करते हैं, और ये बात सच भी है। सो फैमिली हमें मिलती है और दोस्त हम खुद पसंद करके अपने बनाते हैं, इसीलिए दोस्ती की जो स्टोरीज हैं वो यूनिवर्सली कनेक्ट करती हैं। और बॉलीवुड में कुछ फ्रेंडशिप्स इतनी आइकॉनिक हैं कि कैरेक्टर्स के नाम सुनते ही पूरी फिल्म याद आ जाती है। सो एक फन फैक्ट बताती हूँ, रिसर्च बताती है कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करती है और हैप्पीनेस इंक्रीज करती है, यानी गुड फ्रेंड्स लिटरली हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। सो आज का सवाल भी आपसे यही है कि बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक दोस्ती यानी फ्रेंडशिप कौन सी है, और आपके लिए सर्किट या फिर जय वीरू कौन आपकी लाइफ में है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम ये सब कॉस मिडनाइट लाउंज. सो आज की किताब बहुत सिंपल है और शायद इसीलिए बहुत पावरफुल है. वी हैव लॉट ऑफ बुक्स जिसके बारे में हमने बात की है और यू नो जो किताबें मैं पढ़ती रहती हूँ उनमें से एक है ट्यूजडेज विद मॉरीज. बड़ी अच्छी किताब है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है बट यू विल लव इट. स्टोरी एक प्रोफेसर और उसके फॉर्मर स्टूडेंट की है. हर ट्यूसडे एक कॉन्वर्सेशन होता है, बस ट्यूसडेज विद मॉरीज. किताब के नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि हर ट्यूसडे एक कॉन्वर्सेशन होता है. कोई एक्शन नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस हैं और उन कॉन्वर्सेशन में लाइफ, लव, वर्क, फैमिली, टाइम सब कुछ है. मतलब आपको लगेगा कि ये तो मतलब होल लाइफ आपने उस किताब में जी ली है. सो एक फैक्ट बताती हूँ, ये किताब रियल स्टोरी पर बेस्ड है. ऑथर जो हैं उन्होंने अपने प्रोफेसर मॉरी के साथ हुए एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस को किताब में लिखा है और दुनिया भर में ये मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल हो चुकी हैं. मुझे इस किताब की एक लाइन बहुत पसंद है, वो कहती है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज टू लर्न हाउ टू गिव आउट लव एंड टू लेट इट कम इन. सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल. आज के फास्ट वर्ल्ड में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेकिन विजडम वो अक्सर कॉन्वर्सेशन से ही मिलती है. तो आज रात का सवाल भी बस यही है कि आपकी लाइफ का बेस्ट टीचर कौन रहा है? स्कूल टीचर, कोई फ्रेंड, कोई पेरेंट, या फिर आपने खुद लाइफ से बहुत कुछ सीखा है? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। सो आज हम थोड़ा वर्ल्ड टूर करते हैं। पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस इमेजिनेशन का टिकट चाहिए। सोचिए अगर आप किसी दूसरी कंट्री से एक आदत, एक ट्रेंड या एक कल्चर बोरो कर सकते तो क्या करते। सो आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट और मुझे फिर कुछ रील्स याद आई, मुझे कुछ कॉन्वर्सेशन याद आई जिसमें जापान की पंचुअलिटी के बारे में मुझे याद आया कि जापान ट्रेन ना सेकेंड्स के हिसाब से लेट मानी जाती है। नीदरलैंड्स की साइकिलिंग कल्चर जहाँ साइकिल चलाना लाइफ स्टाइल होता है। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम या डेनमार्क का वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब हर कंट्री की अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है, वैसे ही कतर में भी बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं। सो एक फैक्ट बताती हूँ, फिनलैंड को कई बार दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री में रैंक किया गया है और रिसर्चर्स कहते हैं कि हैप्पीनेस का जो रिलेशन है वो सीधे पैशन से होता है, ट्रस्ट, कम्युनिटी और बैलेंस से भी होता है। और मुझे लगता है कि हर कंट्री के पास एक सुपर पावर होती ही है। सो चाहे वो डिसिप्लिन हो या फिर स्लो लिविंग हो इटली का या फिर साउथ कोरिया की रीडिंग कल्चर हो, ये सब अलग अलग कंट्री से सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी कंट्री से एक आदत लेकर आना चाहो या सीखना चाहो तो वो क्या होगा। और अगर आपने किसी कंट्री को विजिट किया है और वहाँ से कुछ नया सीखा है तो बताइए मुझे, विच इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 3311063। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम ये ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. आज म्यूजिक की बात करते हैं लेकिन फेवरेट सॉन्ग की नहीं, ठीक है, उस गाने की जिसके साथ आपके लिए एक नई दुनिया खोल दी थी, ठीक है, जो हो सकता है कि किसी ने पहली बार आपको जब जगजीत सिंह साहब की गज़ल सुनाई, या फिर आपको लगा कि यार ये तो अलग ही लेवल है, मतलब, या फिर पहला कोक स्टूडियो का कोई ट्रैक सुना आपने, पहला कोई रॉक सॉन्ग, पहला कोई क्लासिकल कंपोजिशन. सो म्यूज़िक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो फैमिलियर म्यूज़िक को पसंद करता है, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम अनफैमिलियर म्यूजिक को चांस देते हैं. इसीलिए कई बार एक गाना सिर्फ गाना नहीं होता, वो गेटवे होता है, वो नया जॉनर होता है, वो नया आर्टिस्ट होता है, वो नया कल्चर का होता है. सो एक एक और चीज़ है, फिर आप उस दुनिया में ना एंटर करते चले जाते हो. जैसे किसी ने पहली बार ए आर रहमान सुनाया, या नुसरत फ़तेह अली साहब खान सुनाया, या फिर किशोर कुमार को आपने सुना, या फिर वापस मुड़ने का मन ही नहीं करता. मतलब ऐसा ही मुझे लगता है कि कौन सा गाना आपको एक नए म्यूज़िक वर्ल्ड में लेकर जाता है. जैसे मैं अपना यूट्यूब खोलती हूँ या जब मैं रेडियो ऑन करती हूँ, तो मुझे ना बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सुनाई दे रही होती है. रेडियो पे तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ सरप्राइज, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने एक प्लेलिस्ट बनाई होती है और आप उसमें एंटर करते हो, और फिर आपको लगता है कि यार ये गाने तो मतलब आज शाम मतलब यही चलने वाला है बस. सो कौन सा ऐसा जोन है जो आपको सुनकर बड़ा मजा आ जाता है? 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

वो कोई एक लाइन जो किसी ने बहुत ही कैजुअली बोली और आप कभी भूल नहीं पाए। हो सकता है टीचर्स ने बोली हो, दोस्तों ने बोली हो, किसी पेरेंट्स ने बोली हो या किसी स्ट्रेंजर ने बोली हो। मुझे हमेशा एक लाइन पसंद आती है, डोंट कंफ्यूज बीइंग बिजी विद बीइंग प्रोडक्टिव। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, मिडनाइट लाउंज। सिंपल लेकिन पावरफुल। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन स्टोरीज और शॉर्ट मेमोरेबल जो फेसेस होते हैं उनको फैक्ट से ज़्यादा याद रखते हैं। इसीलिए कई बार एक सेंटेंस पूरी किताब से ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ कर जाता है। और हम सबके पास ऐसी एक लाइन ज़रूर होती है जो डिफ़िकल्ट टाइम में याद आ जाती है। जैसे वो ऑल इज़ वेल एक लाइन थी मूवी की, थ्री इडियट्स की, राइट? वो हम हर जगह बोलना स्टार्ट कर चुके थे, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। डिसीजन लेने वक्त मतलब याद आ जाता है कि यार सब ठीक ही होगा, और लाइफ को थोड़ा सा क्लियर बना देती है वो लाइन। तो आज रात का ऐसा सवाल भी है मेरा आपसे कि कौन सी एक लाइन है जिसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया है। You are listening Radio Olive. Number hai 3311063. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. इमेजिन कीजिए एक शांत सा कोई कैफे है, बारिश हो रही है जो कि अभी कतर में नहीं हो रही है, चाहे आ चुकी है, और सामने बैठे हैं दुनिया के किसी एक राइटर का, मैं नाम ले सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, मतलब गुलजार, रस्किन बॉन्ड, प्रेमचंद हो सकते हैं, अमृता प्रीतम, या फिर मुराकामी, या फिर कोई और राइटर जो आपको बहुत पसंद है. अब सवाल ये है कि आप उनसे क्या पूछोगे, किताब के बारे में, जिंदगी के बारे में, प्यार के बारे में, या क्रिएटिविटी के बारे में. सो रस्किन बॉन्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अ राइटर्स जॉब इज टू नोटिस थिंग्स, और मुझे लगता है कि इसीलिए राइटर्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, वो वही दुनिया देखते हैं जो हम नहीं देखते हैं. लेकिन उसमें जो हम दुनिया देखते हैं वो देखते हैं, मतलब बाहर से तो सेम ही होती है, पर उसमें कहानियाँ उनको नज़र आती हैं, और शायद इसीलिए बुक्स इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो हमें नई जगहों पर लेकर जाती हैं, नए पर्सपेक्टिव्स देती हैं, नए चीज़ों के बारे में सोचने के लिए बताती हैं. सो आप किस राइटर के साथ एक शाम बातें करना चाहोगे, और सबसे पहला सवाल कौन सा पूछोगे? 3311106 इज़ माई नंबर. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, मैं हूँ व्हाट्सएप पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर 3311106 पर. स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

बिंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM.

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास